उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसे थोड़ा ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो कभी घमंड ना करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा संभल कर है चलना।

0: किशोर कुमार जी की आवाज में अभी अभी आपने सुना कोरा कागज था मन मेरा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:41 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।
1: हंसो मत, बोलो

उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, थोड़ा ख्याल अपनी ज़मीन का भी रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन ज़मीन पर तुमको नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन ज़मीन पर नीचे, सारी जिंदगी कोई हवा में नहीं रहता। 5:45 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। ये सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 నిలయంలో సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है. नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
1: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है. विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है. पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था. दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श

0: जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना

0: राज्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, pro-active and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office, but by public service. The nation is paying homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In her message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said, Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tribute to Mahatma Gandhi and said his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Vikasit Bharat by 2047. A Sarv Dharma Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

0: showing remarkable composure under pressure. The 17-year-old repeatedly delivered crucial tens when India needed them most, including the decisive shot that sealed the gold medal. Ankita Bhagat provided valuable experience and consistency, while Kirti had moments of pressure during the final, but India's collective effort proved decisive when this was the first time in history that India ever reached the final of this event. Anupam.
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है. और जैसा कंपाउंड आर्चरी में किया था, वैसे ही आज रिकर्व में भी हो रहा है. रिकर्व थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म है, और आप तो बता ही चुकी हैं, स्वर्ण पदक आ गया और एक और स्वर्ण पदक पर पूरी पूरी निगाहें हैं. यह है मिक्स्ड इवेंट, जिसमें आज भारत की टीम ने बहुत जबरदस्त खेला. सेमीफाइनल में जापान को 5-3 के स्कोर से हराया, और इसी वक्त चल रहा है उसका फाइनल, और इसमें पीछे है भारत चीन से, और ये बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है. और बल्कि इसमें सारे शूट्स हो चुके हैं, सारे तीर मारे जा चुके हैं, और लगता है भारत इसमें पीछे रह गया है. 2-4 से पहले पीछे था, और अब 3-5 से पीछे हो गया है. यानी रजत पदक, फिर भी एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, और इसके अलावा अभी मेंस टीम तो बाकी है.
0: करेक्ट, एंड कमेंडेबल स्टार्ट टू द डे. इनफैक्ट भारत के एंगल से रग्बी सेवन के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों. इंडिया प्रोड्यूस्ड अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस टू डिफीट मलेशिया 26-5 इन द वुमेन्स रग्बी सेवन पूल ई मैच एट द एशियन गेम्स. भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज, वाइल टूडू संध्या रानी एंड कुमारी आरती ऑल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री ओवर मलेशिया.
1: बिल्कुल, और अब हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा आपको और भी बता सकते हैं. इसमें धीरज देव बोमरा, जो विश्व में नंबर 1 की पदवी रखते हैं, वो थे, और साथ में कुमकुम महोत थी. बहुत लड़ाई की, बहुत अच्छी लड़ाई की, और हम कहेंगे सेमीफाइनल तक पहुंचना और फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है. तो एक स्वर्ण पदक और दूसरा रजत पदक. इसके अलावा कुश्ती में हम बात करते हैं. कुश्ती में आज बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है. फ्री स्टाइल के मुकाबले थे, भारत के 4 पहलवान थे. सबसे पहले प्रिया 60 किलोग्राम में कजाक की काइजी मेडट से हार गई, और ये चित होकर हारी, यानी कि विक्ट्री बाई फॉल मिली मेडट को. और 50 किलोग्राम में दीपांशी वो जापान की यूई सुशाकी के विरुद्ध थी, और ये भी टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर यूई ने मुकाबला जीत लिया. और इसके बाद 125 किलोग्राम में रजत राहुल, ये कुश्ती जरूर थोड़ा सा उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वो हार बैठे मुकाबला पॉइंट्स अंकों के आधार पर. लेकिन 65 किलोग्राम में, जिस पर सबसे अधिक उम्मीदें थी, सुजीत, उन्होंने अफगानिस्तान के उमर सैयद को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर परास्त किया, और इस समय उनका मुकाबला चल रहा है ईरान के अब्बास इब्राहिम के साथ, और ये पहला राउंड है, और देखते हैं इसमें क्या होता है. बस इसकी शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में.
0: राइट, गुड न्यूज, वन गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग. नाउ लुक, लेट्स हैव अ लुक एट वॉलीबॉल आल्सो. इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया 3-1 इन द मेंस वॉलीबॉल 5th-8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच. इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23. इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23.
1: बिल्कुल, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर आई है. वॉलीबॉल में भारत ने अपने पूल में सारे मैच जीते थे. भारत वॉलीबॉल में एक अच्छी टीम है. हालांकि 3 कांस्य पदक आते रहे, लेकिन इधर करीब पिछले 20 साल से कोई पदक नहीं आया है. और अब वो हार गए थे उसके पश्चात पाकिस्तान से, और अब वो 5वें से 8वें स्थान के लिए क्लासिफिकेशन मैच खेल रहे हैं, जिसमें से पहला मैच उन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से, यानी लगातार सेट्स में हरा दिया है. अब 5वें और 6ठे स्थान के लिए उनकी लड़ाई होगी, अगला मैच होगा.
0: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट, वेयर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू 3rd प्लेस आफ्टर चाइना हु वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2 रेसेस. इंडिया हैड इनिशियली फिनिश्ड 4th एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस, बट द सबसिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम. सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट टीम आल्सो.
1: बिल्कुल, समय कम है, लेकिन इतना बता दें सबको इंतजार आ रहा है आज हॉकी का, जिसमें भारतीय लड़कियां स्वर्ण पदक पर निशाना साधेंगी. चीन के विरुद्ध मैच होगा. इसके अलावा बॉक्सिंग में 3 फाइनल्स हैं, तो हमारी अपडेट्स के साथ बने रहिएगा.
0: जी, और जाने से पहले आपको यह भी बता दें कि आज भारत की पोजीशन क्या है दिन की शुरुआत.

ಸಾರದಾಗಿ ನೋಳ್ಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲಿಹರಿಸ್ತರಟ ಟಡ ಟಡ ಟಡ ಟಡ ಟಡ.

0: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
0: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
0: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
0: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।

ऑल राइट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। आज का दिन एक नया सफर है, एक नई रोशनी है। 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, द बर्थ एनिवर्सरी, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, द अपोस्टल ऑफ पीस एंड ट्रूथ। और उनकी नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत ने दुनिया को बदल दिया।

अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत ने दुनिया को बदल दिया, और आज हम यहाँ पर इस मंच पर, इस शो पर उनकी यादों को सुरों के साथ जीते हैं। नमस्ते, हेलो, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त, मित्र और आपका प्रिय रेडियो मैन, आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के माध्यम से लेकर आया हूँ एक महफिल जो दिल को सुकून देगी और जज्बात को जगाएगी। तो आइए शुरुआत करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े थे। ऑस्कर होने दीजिए या फिर हिंदुस्तानी जगत की बेहतरीन बायोपिक्स में से एक फिल्म है गांधी, उसी का एक छोटा सा हम ये गीत सुनेंगे, फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट।

0: ऑलराइट, सो नाइस अप्रिसिएशन आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा खास कार्यक्रम, और आज की जो महफिल सजी है वो है रेनबो रिदम्स। जी हाँ, हमने अपने शोज के नाम थोड़े तब्दील किए हैं, तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुन सकते हैं, सुन रहे हैं रेनबो रिदम्स। फिर उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक आप सुनेंगे अब बीटा, जहाँ पर दिन की जो कार्यक्रम या फिर अपनी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हम बताएंगे। यादों की बारात में आपको लिए चलते हैं हम ऐसे माहौल में जहाँ पर आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। और फिर मेरा अंतिम और आखिरी जो सफ़र रहेगा आपके साथ, तो वो 1 बजे से 2 बजे के दरमियान रहेगा, दिले रूबानी जिसका नाम है। वो फ़ोन इन प्रोग्राम भी है जहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रिए से मैसेजेस भेज सकते हैं। तो रेनबो रिदम्स, जी हाँ, तो इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं आज एक बहुत अहम दिन है, 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर जो है वो दो अहम इंडिया के, मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट लीडर्स का बर्थडे भी है, जैसे महात्मा गांधी, तो उनकी फिलॉसफी हमेशा से अहिंसा और सत्याग्रह के लिए रही है। और साथ ही साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जो कि हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने जो स्लोगन हमें दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ, और हमने जो अभी थोड़ी देर पहले जो गाना पेश किया आपके लिए वो था आशा पारेख की फिल्म आपके कटी पतंग से, और आज भी उनका बर्थडे है। तो बहुत सारे लोगों का आज बर्थडे है। देर इज़ ऑल्सो दिस के कामराज डेथ एनिवर्सरी एज वेल, सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एज मैनी गुड सॉन्ग्स एज पॉसिबल टू यू। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम चाहते हैं कि आज उनको एक बहुत अहम श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा ये खास गाना। आपने अपने रेडियो सेट से ट्यून किया है रेनबो एफएम का खास प्रोग्राम रेनबो रिदम्स।
1: हे वेरी हंग्री, व्हाट स्पेशल टुडे?
2: बिरयानी, कबाब्स, हलीम, बट वेट, दिस मोर।
1: मोर देन फूड, इट्स द स्टोरीज बिहाइंड द रेसिपीज, द हिस्ट्री ऑफ द किचन्स एंड द फ्लेवर्स दैट शेप्ड आवर सिटी। And where do we taste all this?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

All right, once again, folks, welcome to द शो रेनबो रिदम्स. और आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसी अजीम शख्सियतों के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा लाजवाब लासानी मुल्क बनाया और इतनी कुर्बानियाँ दी कि बयान नहीं कर सकते. तो आज हम उन दोनों को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को. सो आज एक डबल रिमेम्बरेंस है क्योंकि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री, टू लीडर्स हु टॉट अस दैट सिंप्लिसिटी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सैक्रिफाइस आर द पिलर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन. व्हाट बेटर ट्रिब्यूट दैन टू सेलिब्रेट The soils of India itself. इस वजह से हमने ये गाना आपके लिए प्रस्तुत किया उपकार फिल्म से, मेरे देश की धरती, sung by महेंद्र कपूर. This is the anthem is not just for the music, but it's the heartbeat of patriotism. हर बार 15 अगस्त होने दीजिए, 26 जनवरी होने दीजिए, या कहीं भी कोई समारोह जो पैट्रियटिज्म के ऊपर है, यहाँ पर echoing the pride of Indian farmer, soldier, and also the citizen. So this is the beauty of that song. I'm your radio man and I'm trying to bring some more, you know, songs which are going to have some reflections on these two important personalities of our country, our heroes and our homeland. है ना कमाल की बात. मेरे देश की धरती, दरअसल कल्याण जी आनंद जी ने इसे मौसीकी से अपने बहुत ही खुशगवार तरीके से पिरोया. फिर इसके जो बोल लिखे वो गुलशन बावड़ा ने लिखे. और ये जो धरती है हिंदुस्तान की, जो तहजीब, तमद्दुन और इस मिट्टी की जो खुशबू है और जो फख्र है हमारे किसानों पर, वो सभी इस एंथम में डाल दिए. तो ये सॉन्ग असल में गोल्डन फील्ड्स ऑफ द फार्मलैंड, फार्मर्स एज हीरोज. और ये असल में देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी का ही स्लोगन था कि जय जवान जय किसान, वहीं से निकल कर आया था. मनोज कुमार ने फिल्म उपकार डायरेक्ट की. वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी से और कई बार अपने फार्मर्स और शोल्डर्स को हमेशा वो श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट देते रहे हैं. ही हिमसेल्फ प्लेड द रोल ऑफ भरत, नाम भी ऐसा रखा था. फिर उसके बाद उनका नाम भरत कुमार पड़ गया. A farmer who sacrifices for the nation and it's a social realism. Upkar was a massive success. Filmfare Award mein bhi kafi jeete hain. To Lal Bahadur Shastri ji ka ye slogan raha hai, Jai Jawan Jai Kisan. Jiski prerna lekar, jisko inspiration maan kar Manoj Kumar ne ye film Upkar banayi thi. Mahender Kapoor ki badi hi

दिलकश और खूबसूरत आवाज़ मेरे देश की धरती won him the national award for the best playback singer and the song became popular and that often performed at the official state functions and Bharat Kumar मनोज कुमार से भरत कुमार बन गए, तो है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, मेरे देश की धरती हमें याद दिलाता है कि देश की असली ताकत असली उसकी मिट्टी में है, उसके किसानों जवानों और उसके सिटीजन्स में हैं। आज गांधी जी और शास्त्री जी के जन्मदिन पर हम उनके सपनों को याद करते हैं, एक देश जो सच्चाई अहिंसा और मेहनत से मजबूत बनता है। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दूसरा गाना। लता मंगेशकर, मन्ना डे और MS सुब्बुलक्ष्मी ने बारी बारी से अलग अलग गाने गाए हैं, लेकिन मैं लता मंगेशकर का वर्जन ले रहा हूँ, वैष्णव जन। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये नगमा रेनबो रिदम्स में।

एब्सोल्युटली अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन. एंड हम यहाँ पर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के आज बर्थ एनिवर्सरीज पर रिच ट्रिब्यूट्स एंड होमेज पे कर रहे हैं. सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग हैदराबाद. आज छुट्टी का दिन है. आज 2 अक्टूबर को जो छुट्टी दी गई है वो महात्मा गांधी जी की जयंती के संदर्भ में दी गई है. सो ऑन दिस डे ऑफ रिमेम्बरेंस वी ऑनर टू लीडर्स हु शेप्ड इंडियाज सोल, नो डाउट अबाउट इट. तो दोस्तों आज का जो दिन है वो एक यादगार पल है और इस पल को हम खोना नहीं चाहते. इसी वजह से लता मंगेशकर का जो रेंडिशन है वैष्णव जन तो इज अ सीरीन एंड डिवोशनल कैरिंग द एसेंस ऑफ गांधी जीज फिलोसफी. द भजन ओरिजिनली कंपोज बाय नरसिंह मेहता in the 15th century and was Gandhi's constant companion. ये गाना जो है एक बड़ा ही दिलचस्प devotional गाना कह सकते हैं. And sung at the prayer meetings and Lata's voice added a timeless purity and making to resonate across generation. Gandhi ji loved this hymn and because it spoke of empathy. A true Vaishnav is one who feels the pain of others. लाल बहादुर शास्त्री का जो स्लोगन है जय जवान जय किसान कॉम्प्लीमेंट्स दिस मैसेज आल्सो रिमाइंडिंग अस दैट द कंपैशन एंड सैक्रिफाइस आर द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड दिस इज नथिंग बट पेइंग आवर ट्रिब्यूट टू बोथ द लीडर्स. वैष्णव जन तो वो संग बाय गांधी जी प्रेयर मीटिंग. लता मंगेशकर का जो वर्जन है वो एक बहुत ही रिमार्केबल है और ये हिम जो है वो यूनाइटेड नेशंस 2019 टू मार्क गांधी जीज 150th बर्थडे एनिवर्सरी शोइंग हिज ग्लोबल रेलेवेंस एज वेल. तो दोस्तों वैष्णव जन तो हमें ये सिखाता है कि असली इंसान वो है जो दूसरों के दुख में शरीक हो और दूसरों का दुख महसूस करे, एम्पैथी रहे उसके अंदर. गांधी जी के लिए ये एक भजन एक रूहानी साथी की तरह था और वो आज के दिन हम उसे उनकी यादों के साथ जीते हैं. सो शास्त्री जी के पैगाम के साथ मिलकर ये हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि एकता और दया का रंग जो है वो बहुत ही

0: कहता है। तो रेनबो रिदम्स में आगे बढ़ते हैं और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आपके लिए एक और खूबसूरत सा गाना आने वाला है। स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर।
1: हे वेरी हंग्री, व्हाट स्पेशल टुडे?
2: बिरयानी, कबाब्स, हलीम, बट वेट, दिस मोर।
1: मोर देन फूड, इट्स द स्टोरीज बिहाइंड द रेसिपीज, द हिस्ट्री ऑफ द किचन्स एंड द फ्लेवर्स दैट शेप्ड आवर सिटी। And where do we taste all these?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

बहुत ही शानदार सा गाना आपने सुना। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम याद करते हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को, क्योंकि उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पैगाम दिया। और ऐसे नारे जो आज भी रोशन है, साबरमती के संत इज अ पैट्रियाटिक सॉन्ग दैट प्रेजेस गांधी जी एज द सेंट ऑफ साबरमती हु परफॉर्म्ड अ मिरेकल बाय लीडिंग इंडिया टू फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस। आशा भोसले इस पावरफुल रेंडिशन विद इट्स सोरिंग नोट्स टर्न्ड इट इनटू अ नेशनल फेवरेट। द लिरिक्स सेलिब्रेट्स गांधी जीज एबिलिटी टू अवेकन अ नेशन विद ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी, मेकिंग हिम अ सिंबल ऑफ होप एंड करेज। द सॉन्ग वॉज कम्पोज एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी कैप्चरिंग हिज रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ऑन गांधी जीज Jayanti, it resonates as a reminder of his philosophy of non-violence. जी हाँ, तो ये जो गाना है वो 1960 जिसमें उस वक्त कंपोज किया गया, आशा भोंसले ने जिसे गाया। और क्योंकि द टाइटल रिफर्स टू गांधी जी साबरमती आश्रम वेयर ही लिव्ड एंड प्लान्ड मैनी मोमेंट्स। बहुत ही दिलकश सा गाना, मुझे उम्मीद है कि ये आपके अंदर गांधी जी के जो जज्बात है उसको जागृत करेगा। तो फिल्म में भी इसे लिया गया था जिसकी वजह से आशा भोसले ने गाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा एक और अहम गाना। और इस बार हमने पूर्व पर पश्चिम ये फिल्म से गाना लिया है, क्योंकि जय जवान जय किसान की जो फिलॉसफी है वो ना सिर्फ उपकार फिल्म तक महदूद थी, वो दूसरे अन्य फिल्मों में भी, मनोज कुमार की फिल्मों में स्पेशली जब उन्होंने डायरेक्ट की, उन्होंने एक्ट किया, तो उसमें भी कई जगह नज़र आती है। तो इसी वजह से ये गाना आपके लिए आ रहा है, महेंद्र कपूर की एक बार फिर से आवाज़ में। और मनोज कुमार पर ये फिल्म, ये गाना दर्शाया गया, पूर्व पश्चिम से भारत का रहने वाला हूँ।

दोस्तों 11 बजे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक हमारे तेलुगु वार्तालु के लिए फ्रॉम आर हैदराबाद प्राइमरी चैनल. स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यूज़ हेडलाइंस.

Kamaraj, and today is also the International Day of Nonviolence. And we might be able to talk a little bit about the health. Why does it take more time for us to get rid of the cough, like I'm suffering, hence. और क्रिकेट की दुनिया से कुछ जो खबरें हमें मिल रही हैं, वो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो फाइनल होने वाला है, उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका को बीट करके फाइनल तक रसाई की है, पहुंचे हैं. तो द आर्क राइवलरी विल बिगिन फॉर द फाइनल मैच, दैट इज टुमारो. एंड वी वुड ऑल्सो बी सेलिब्रेटिंग द वर्क्स ऑफ आशा पारेख एंड कृष्णम कुमार मेनन, नोन पॉपुलरली एज के मेनन. उनकी भी फिल्मों से हम कुछ गाने लेंगे और डोनाल्ड मैकलीन के भी हम

से हम कुछ गाने लेंगे और डोनाल्ड मैकलीन के भी हम कुछ गाने यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करेंगे. एंड टुडे इज ऑल्सो द ग्राहम ग्रीन, एन इंग्लिश राइटर जर्नलिस्ट रिगार्डेड बाय मेनी एज वन ऑफ द लीडिंग नावलिस्ट ऑफ द 20th century. और आज टेलीविजन की मशहूर अदाकारा हिना खान का भी जन्मदिन है. सो चलिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये जो गाना है आप इसे कैसे देखते हैं. आई रियली वॉन्टेड टू ब्रिंग इट टू यू, ए वेरी इंटरेस्टिंग दिस सॉन्ग एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव दैट. सो डाउन मैकलीन नंबर फॉर यू, लेट मी गो.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने बाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smith Machar has been transferred to Abu Dhabi. The Saudi press agency, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had the UAE and was recovering well. As reported by SBA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. According to SBA, preliminary investigations by Saudi authorities in coordination with a UAE security team revealed that an altercation occurred in which the co-pilot assaulted the captain, resulting in injuries to both individuals. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 150th

0: ऑल राइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे शो में, जिसका नाम है यादों की बारात। दोपहर के 12:12 हो रहे हैं हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में, तो हम यादों की बारात की जो महफिल है उसको सजाते हैं और ऐसे चुनिंदा नगमे जो आपको माजी की यादों में लेकर जाते हैं। आज एक खूबसूरत लम्हा है, एक खूबसूरत दिन है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1942 यानी कि 2 अक्टूबर 1942 को इस अदाकारा का जन्म हुआ। और वो ना सिर्फ एक बड़ी अदाकारा है बल्कि फिल्म डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने तकरीबन तकरीबन 85 फिल्मों में काम किया है और 40 साल तक वो मुसलसल काम करती रही है। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है उनकी इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए, और उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। तो मैं दरअसल बात कर रहा हूँ आशा पारेख की। तो उनकी एक फिल्म से हम गाना सुनेंगे और फिर उनके ज़िंदगी के ताल्लुक से बातें करेंगे। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और उससे पहले कि मैं ये गाना आपके लिए प्ले करूँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक बल्कि एक कमर्शियल स्पॉट हम प्ले करेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए आशा पारेख की बल्कि आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में यार चुलबुला है वो गाना सुनेंगे।
1: ఎల్ఐసి వారి బీమా ప్లాటినం లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఆప్షన్ తో 7, 10, 12, 15 ఇంకా 18 సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లించే సదుపాయం, మీ భవిష్యత్తుకు తగిన ప్రతిఫలం అందిస్తూ బీమా రక్షణ గ్యారంటీడ్ అడిషన్ తో ఇంకా మరెన్నో ప్రయోజనాలు ఎల్ఐసి బీమా ప్లాటినం తో. ఎల్ఐసి, ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.

ऑलराइट, बहुत ही मिसचीफ और काफ़ी चुलबुला सा गाना यार। चुलबुला है दिल देखे देखो फिल्म से, इज़ अ लेजेंडरी एंड अ जेम ऑफ अ फिल्म, संग विथ प्लेफुल एनर्जी और विच ऑल्सो कैप्चर्स द इनोसेंस ऑफ द फर्स्ट लव एंड द जॉय ऑफ टीजिंग रोमांस। तो आज हम यहाँ पर एक ऐसी कलाकारा को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त 40 साल से भी ज़्यादा अरसा हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए दिया। दोस्तों, हम आज आपको एक बार फिर से बता दें कि आज काफ़ी बड़े बड़े लोगों का जन्मदिन है, जैसे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, साथ ही साथ आशा पारेख भी। डॉन मैकलिन को भी हमने सुना थोड़ी देर पहले। याद उनकी बारात में आज हमने जो बारात आपके लिए सजी है, लेकर आए हैं, सौगात है यार, चुलबुला है गाने से हमने शुरुआत की। फिल्म है दिल देखे देखो, जहाँ पर आशा पारेख ने अपनी फिल्म में दिलों को बेबस किया, बल्कि दिलों को जीता। इस गीत में उनकी अदाएं और शर्मीली मुस्कान एक नई रोशनी बनकर उभरी है। मोहम्मद रफ़ी और साथ ही साथ आशा भोंसले की आवाज़ें बेहद खूबसूरत रही हैं, और अगर आप महसूस करें तो ये जो फिल्म थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नासिर हुसैन की ये दूसरी फिल्म थी जिसे प्रोड्यूस किया था शशिधर मुखर्जी ने, जहां पर शम्मी कपूर और आशा पारेख की बेहतरीन जोड़ी रही है। उषा खन्ना की ये डेब्यू कह सकते हैं म्यूजिक कंपोजिशन रही, और इत्तेफाक की बात ये थी कि वो भी, ये जो फिल्म है वो 2 अक्टूबर 1959 को रिलीज हुई है, ना कमाल का दिन। तो ये गाना बहुत ही दिलचस्प है। दिल देखे देखो आशा पारेख की इब्तदाई फिल्मों में से एक मानी जाती है, और आशा पारेख ने यहाँ पर अब नीता का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि एक लवली यंग वुमन कॉट इन टू अ लव स्टोरी फुल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉन्सिलिएशंस। और ये यार चुलबुला है इनोसेंस और यूथफुल चार्म एंड शाइन के ताल्लुक से बेहतरीन सा गाना है। द फिल्म वॉज सक्सेसफुल एंड ओवर नाइट आशा पारेख एक स्टार बन गई, और उनका एसोसिएशन नासिर हुसैन की फिल्मों से बेपनाह करीब रहा। तो दिल देखे देखो उषा खन्ना की डेब्यू

डेब्यू फिल्म थी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, और चुल ब्रियार चुलबुला है शमी कपूर और आशा पारेख, दे वर यूथ आइकॉन्स, और आशा पारेख वॉज हार्डली 17 व्हेन शी वॉज स्टार्ड इन टू इट, 17 साल की उम्र में जब उन्होंने ये गाना बल्कि एक्ट किया है ना। तो दोस्तों यार चुलबुला है हमें याद दिलाता है कि जवानी की मासूमियत और शरारत ही असली खुशी है। आशा पारेख ने अपनी पहली फिल्म से ही सबके दिल जीते, और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा दूसरा नगमा। ढेर सारे यहाँ पर नगमे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो गाना है वो आ रहा है आपकी एक और बेहतरीन सी फिल्म, जब चली ठंडी हवा।

बहुत ही शानदार सी ठंडी हवा की ज़रूरत हैदराबाद को है, क्योंकि हैदराबाद का जो मिजाज है और मौसम है वो भी पारे की तरह चढ़ता जा रहा है। बारिश कभी नहीं हुई है आपके, सितंबर में देखा भी नहीं है हमने बारिश, जिसकी वजह से टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है। तो ठंडी हवा दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही नगमे जो ठंडी हवा लेकर आते हैं, जो आपके दिल को छू जाते हैं। जब चली ठंडी हवा फिल्म दो बदन, जिसमें आशा पारेख की अदाएं और उनकी मासूम मोहब्बत इस गीत को एक बार अमर कर देती है ना। लता मंगेशकर ने इसे गाना गाया और

रवि का संगीत है, लिरिक्स शकील बदायूनी के हैं, सॉफ्ट रोमांटिक बैलेड है जो कि हाईलाइट करता है फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसको। आशा पारेख के एक्सप्रेशन, शाइनेस, टेंडरनेस और फुल ऑफ इनोसेंस है, परफेक्टली एम्बॉडिंग द मूड ऑफ द सॉन्ग। आज उनका जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन पर हम उनके चुनिंदा फिल्मी नगमों को आप तक पेश कर रहे हैं। यादों की बारात में दो बदन 1966 की फिल्म थी, एक ट्रेजिक रोमांटिक ड्रामा था जिसमें मनोज कुमार और आशा पारेख दोनों ने अहम किरदार भूमिका निभाई थी। द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ टू लवर्स सेपरेटेड बाय फेट, सेक्रीफाइस एंड सोसाइटल प्रेशर। आशा पारेख का कैरेक्टर दरअसल डॉक्टर अंजू है, एक यंग वुमन है हु इज डीपली इन लव विद मनोज कुमार्स कैरेक्टर विकास। अंजू और विकास की मोहब्बत की दास्तान है दरअसल ये फिल्म, जहाँ पर उनकी जो मोहब्बत है वो परवान चढ़ती है लेकिन वजूहात की वजह से उसके अंदर गिरावट भी आ जाती है। जब चली ठंडी हवा कैरेक्टर एक इनोसेंस और जॉय को बहुत ही खूबसूरती के साथ आप तक पहुंचाता है, कहीं ना कहीं एक ट्रेजेडी भी सामने आने की गुंजाइश रखती है। एक जज्बाती गहराई इसमें नजर आती है फिल्म में और साथ ही साथ इस गाने में। दो बदन आशा पारेख की बहुत ही अहम मकबूलियत वाली फिल्मों में से एक है और उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी तारीफ के फूल मिले और रवि को काफ़ी हौसला भी मिला इस सक्सेस के बाद। जैसे लो आ गई उनकी याद भी एक बहुत ही दिलचस्प गाना है इसी फिल्म से, नसीब में जिसको जो मिला था, क्योंकि हमारे पास चॉइस बहुत कम थी तो हमें एक ही गाना चुनना था इस फिल्म में। क्योंकि आशा पारेख की बेशुमार फिल्में हैं, 85 से ज़्यादा फिल्में हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आशा पारेख को बहुत ज़्यादा मकबूलियत और उनको काफ़ी तारीफें मिली और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनके ग्लैमर को लेकर, उनके इमोशनल डेप्थ को लेकर। तो दोस्तों, जब चली ठंडी हवा याद दिलाता है कि मोहब्बत एक नरमी है जो दिल को सुकून देती है। आशा पारेख की अदाएं इस गीत को हमेशा के लिए अमर और लाफानी बना देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा दूसरा नगमा, और इस बार जो है हम बातें करेंगे लेकिन आँखों से, और आँखों से कैसे बात की जाती है इस गाने को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा।

ऑलराइट दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, चिराग फिल्म से। 1969 में ये फिल्म आई थी और ये जो फिल्म थी एक ख़ास फिल्म थी, क्योंकि यहाँ पर आशा पारेख ने अपने जज्बाती सफ़र को एक और उड़ान बख्शी और इस गीत को अमर पल की यादगार बना दिया। ये दो वर्जन्स हैं असल में चिराग फिल्म में, एक मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, एक है लता मंगेशकर का, मदन मोहन की मौसिकी से लबरेज़ ये नगमा, और जिसे मजरू सुल्तानपुरी ने अपने कलम से बंद किया, अ डीपली रोमांटिक बैलेड फुल ऑफ लॉन्गिंग एंड डिवोशन। और आशा पारेख के जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ इमोशंस ये सॉन्ग को एक तरीके से एलिवेट भी करते हैं। चिराग एक रोमांटिक ड्रामा थी, सुनील दत्त और आशा पारेख इसके मुख्य कलाकार रहे हैं, और द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लव, मैरिज, ट्रेजेडी, ब्लाइंडनेस। आशा पारेख का जो किरदार है चिराग में वो है शी प्लेज आशा, उन्हीं का नाम है, अ डिवोटेड वाइफ हुज लाइफ टेक्स अ ट्रेजिक टर्न व्हेन हर हस्बैंड लूजेस हिज आई साइट। हर कैरेक्टर एम्बॉडीज रिजिलियंस, फिर उसके बाद कुर्बानी, अनकंडीशनल लव एंड सो ऑन। और ये गाना जो है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हर इमोशंस एंड द डेप्थ ऑफ द डिवोशन। इमोशन और डिवोशन को जगा देने के लिए ये गाना काफ़ी ज़बरदस्त है, मेकिंग द सॉन्ग अ सिंबल ऑफ एटर्नल लव इवन इन द फेस ऑफ डिस्पेयर। चिराग वॉज प्रेज फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ, नो डाउट। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की दोनों की जुदा और अलग अलग जो आवाज़ें रही हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत रही हैं। आशा पारेख के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ तस्लीम किया गया, उनकी इमोशनल इंटेंसिटी को काफ़ी सराहा गया। तो तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है हमें याद दिलाता है कि असली मोहब्बत जो है वो ऐसी होती है जो दुख और अंधेरों में भी रोशनी बनकर उभरती है। आशा पारेख की अदाएं, बल्कि उनके किरदार, काम इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। तो आइए, आपके लिए दूसरा गाना हमारे पास तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता हम एक गाने से दूसरे गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आशा पारेख का जन्मदिन भी है, तो उनके ताल्लुक से कुछ बातें हो जाएं। 1942 में जन्मी, इसी दिन

2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। वो एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी रही हैं, उन्होंने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। 85 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 40 साल से ज़्यादा वो हिंदुस्तानी सिनेमा या फिर इंडियन सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। उनको काफ़ी अवार्ड से भी नवाजा गया, जैसे कि आप पद्मश्री अवार्ड होने दीजिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड होने दीजिए, और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस होने दीजिए, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई है द हिट गर्ल, जो 2017 में रिलीज हुई। आशा बारिक सांता क्रूज मुंबई की लड़की हैं। उनकी माँ सुधा सलमा लक्कड़वाला एक बोहरी मुस्लिम हैं, एंड हर फादर बाचू भाई पारेक एक गुजराती हिंदू रहे हैं। तो दे मेट स्टडिंग एट फर्गुसन कॉलेज इन पुणे। फिर उसके बाद लकड़ावाला वॉज फ्रीडम फाइटर एंड पार्टिसिपेटेड इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। शी वॉज ब्रीफली इनकार्सरेटेड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कलोनियल रूल वाइल प्रेगनेंट विद आशा पारेक। तो उनकी जो ग्रोइंग अप हुई है आशा पारेक की, शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बट चेंज हर माइंड आफ्टर विटनेसिंग अ ट्रेन एक्सीडेंट। She was also interested in dance from a young age, and a veteran actor, Pran Nath, while visiting Mukul Anand's family next door, was impressed by her abilities. He then asked Kathak dancer Mohan Lal Pandey to train Asha Parekh to the upcoming performance at St. Xavier's College, Mumbai, where the director Bimal Roy first saw her, and he would go on to cast आशा पारेख एज अ चाइल्ड एक्टर इन द फिल्म माँ, जो कि 1952 में रिलीज हुई। तो उनकी अर्ली जो करियर हैं एज अ चाइल्ड एक्टर, फिर उसके बाद राइज टू स्टारडम, ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे इस गाने के बाद। और ये जो नगमा आ रहा है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पगला कहीं का फिल्म से ये नगमा।

बिल्कुल, दरअसल हम किसी आर्टिस्ट को भुला नहीं सकते, और आशा पारेख ने तो हमें ऐसी फिल्में दी कि उनकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। और इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी अदाकारी, नाज़ो अंदाज़ को बरकरार रखा, आज भी काफ़ी ग्रेशियस लगती हैं, है ना, कमाल की बात। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट को, एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे फनकार को याद कर रहे हैं जिन्होंने बेपनाह तरीके से इंडियन सिनेमा की खिदमत की। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख की अदाएं और उनकी जज्बाती सफ़र इस गीत को लाफानी बना देते हैं। मोहम्मद रफ़ी की बेहद खूबसूरत आवाज़ और फिर शंकर जयकिशन की मौसिकी, हसरत जयपुरी के बोल और शायरी, एक सोलफुल बैलेट है एक एटर्नल लव और लॉन्गिंग के लिए। आशा पारेख की इमोशनल डेप्थ इस सॉन्ग में और भी ज़्यादा बल्कि क़ुव्वत बख्शती हैं। उनके एक्सप्रेशन काफ़ी टेंडर हैं, वल्नरेबल हैं, और आशा पारेख जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की हार्टफेल्ट आवाज़ को आसानी के साथ अपने जज्बात के ज़रिए पेश कर देती हैं। पगला कहीं का दरअसल 1970 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। शमी कपूर और आशा पारेख इसमें मुख्य कलाकार रहे हैं। ये स्टोरी जो है वो एक रिवॉल्व्स अराउंड अ मैन जो कि थोड़ी मेंटल इंस्टेबिलिटी से दो चार हैं, एंड द वुमन हु लव्स हिम डिस्पाइट सोशल जजमेंट। आशा पारेख का यहाँ पर किरदार सुनीता का है, एक कंपैशनेट डिवोटेड महिला है जो हमेशा हर वक्त शमी कपूर का साथ देती है और उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उनमें बराबर हिस्सा लेती हैं। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हर कैरेक्टर सिंसियरिटी और अनवेवरिंग लव को दर्शाता है। पर सॉन्ग इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी, वफादारी और जज्बाती गहराई बेपनाह तरीके से देखने को मिलती है। तो ये फिल्म प्यार, मोहब्बत और कुर्बानी और फिर जो मेंटल हेल्थ को लेकर 1970 में, जहाँ पर लोगों ने शायद ही ऐसा सोचा होगा, तो कितने प्रोग्रेसिव है ये आप तय कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में ऐसा होना इतना आसान नहीं था। इट वाज रियली रियली टफ फॉर हर, है ना। बिल्कुल, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे एक शानदार सा नगमा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना ज़रूर पसंद आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं तो और दूसरा नगमा सुनने की कोशिश करते हैं। ये जो नगमा है वो हमने लिया है, बड़े ही दिलचस्प नज़ारे हैं इस फिल्म में, पहाड़ों में जब लंबे लंबे देवदार के पेड़ रो

जी हाँ दोस्तों, साथियों और हमारे पास जो भी लोग यहाँ पर इस रेडियो स्टेशन यानी कि आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो पर सुन रहे हैं, उनको एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं कि आज आशा पारेख का जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन पर हम पेश कर रहे हैं उनकी मशहूर फिल्मों में से, बल्कि चुनिंदा फिल्मों में से चुनिंदा नगमे। ओपी नैयर की मौसीकी के तले ये बेहतरीन सी एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ जो मैं बयान नहीं कर सकता। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे ऐसे दिलकश अंदाज में गाया है कि अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आप शायद उन पहाड़ों, उन देवदार के पेड़ों के करीब हो जाएंगे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल जैसे लगता है कि एक आपके हारमनी है। म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर के साथ, लिरिसिस्ट के साथ और साथ ही साथ सिंगर। ब्रीजी रोमांटिक ट्रैक, फुल ऑफ प्लेफुल एनर्जी, यूथफुल चार्म, सब कुछ आशा पारेख के

एक्सप्रेशन इस गाने में देखने के लायक है। कभी कभार ऐसी पीछे मुड़कर देखना एक ग्लांसिंग सा लुक है, ग्रेसफुल मोमेंट्स है, अ स्पिरिट ऑफ यूथफुल लव एंड मेकिंग द सॉन्ग विजुअली एनचांटिंग कह सकते हैं। मेरे सनम दरअसल फिल्म है, 1965 की ये फिल्म है, एक रोमांटिक थ्रिलर है जहाँ पर बिस्वजीत और आशा पारेख अहम कैरेक्टर्स हैं और ये फिल्म दरअसल रिवॉल्व करती है मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ पर। उस ज़माने में मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ पर फिल्में बहुत आती थी और चलती भी थी इतनी शानदार तरीके से कि एक दूसरे की शनाख्त अगर बदल जाए तो क्या होता है, मोहब्बत होती है, कभी कभार कुछ गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट लव एंड बिट्रेयल सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सस्पेंस भी है। इस फिल्म में आशा बारिक ने नीना का किरदार किया है। नीना एक नौजवान लड़की है, वो एक जाल में फंस जाती है जहाँ पर धोखा है, फरेब है और फिर उसके साथ साथ एक चार्मिंग सी दुनिया भी है। पुकारता चला हूँ मैं एक इनोसेंस अल्यूर और शाइन को एक डिलाइटफुल तरीके से बयान करता है। उनका जो रोल है वो ग्लैमर और जज्बात को बराबर बैलेंस करने के लिए बनाया गया है एंड मोस्ट मेमोरेबल हीरोइंस ऑफ द 1960s कह सकते हैं। और ये साउंडट्रैक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, अभी भी ये गाने हम रेडियो पर सुनते हैं, प्ले भी करते हैं, जैसे कि आज हमने प्ले किया। मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म दुनिया भी है, पुकारता चला हूँ मैं एक गाना जो मोहब्बत एक मुस्कान है जो ज़िंदगी को रंगीन बनाती है उसको एक बार फिर से दर्शाता है। आशा पारेख की अदाओं को और उनके गीतों को हम यहाँ पर आज याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मेरे सनम फिल्म और आशा पारेख की ज़िंदगी के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे। तो उनका जो करियर शुरुआत, उनके करियर की जो शुरुआत हुई 1952 और 1956 के दरमियान रही, वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट माँ फिल्म में 1952 में नज़र आई जहाँ पर बेबी आशा पारेख थी वो। फिर उसके बाद आसमान फिल्म आई, फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर बाप बेटी, फिर धोबी डॉक्टर और फिर उस ज़माने में तकरीबन 3 साल में उन्होंने एक 8 फिल्में कुछ की। फिर आशा पारेख को सपोर्टिंग रोल में ज्वाला फिल्म में भी देखा गया और दैट वाज बिकॉज उस वक्त ये मधुबाला काफ़ी अलील थी, बीमार रहती थी, इस वजह से उन्हें वहाँ पर जगह दी गई। बाप बेटी के फिल्म के बाद उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली और उन्होंने आशा पारेख ने डिसाइड किया कि चलिए अब एक्टिंग को खैराबाद कहते हैं और स्कूलिंग को हम गले लगाते हैं। और फिर लेकिन 1959 के बाद जो दौर रहा है 1990 तक का, जो कि बहुत अहम है, 30 साल का, वो उस पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपके लिए आ रहा है और ये है तीसरी मंजिल फिल्म से और ये गाना काफ़ी मशहूर है, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज़ गोइंग टू लिप सिंग दिस।

बहुत ही दिलकश और शानदार सा नगमा, आँखों से जो उतरी है दिल में फिर वही दिल आया हूँ। फिल्म से 1963 की है फिल्म, और इस फिल्म ने बेहतरीन से गाने भी हैं, काफ़ी गहराइयों के साथ लिखे गए हैं मोहम्मद रफ़ी, ओपी नैयर और दूसरे जैसे कि आशा भोंसले की आवाज़ों में भी आप ये गाने सुन सकते हैं। ये एक शानदार सी फिल्म थी जहाँ पर जॉय मुखर्जी और आशा पारेख के हीरो हीरोइन के तौर पर आपने ऑडियंस ने देखा। नासिर हुसैन ने इसे डायरेक्ट किया, और ये भी फिल्म जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी, लव ट्रायंगल्स और ट्रायम्फ ऑफ ट्रू लव, यानी कि जो असली मोहब्बत है वो हमेशा जिंदा रहती है और जीती है। इट्स अ वाइब्रेंट स्टोरी टेलिंग, मेलोडियस साउंड ट्रैक और हर चीज़ बेहतरीन है। ओपी नैयर को इस गाने के लिए, बल्कि गानों के लिए काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, और रफ़ी साहब को भी इस फिल्म की वजह से काफ़ी आपको अप्रिसिएशन मिला। तो आशा पारेख की केमिस्ट्री जॉय मुखर्जी के साथ भी काफ़ी प्रेस की गई, और इसमें फ्रेशनेस और चार्म सब कुछ बरकरार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारा ये यादों की बारात का जो सिलसिला है हम उसे आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि 1 बजे जो है हमारा जो शो है वो दरअसल है दिले रुबानी, यानी कि जहाँ पर आप काइंडनेस, बहुत सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपके अचीवमेंट्स, आपके कंपैशन और आपके इंस्पिरेशंस, जो कि जैसे आज महात्मा गांधी की जो योम पैदाइश है हम आज उन्हें याद कर रहे हैं इसी वजह से। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: ऑलराइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है. हमारा एक नया एडिशन, नया शो है और दिल रुबानी, और इसमें हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने हमारे नंबर्स पर मैसेज करें. 0402324822 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आप हमें बता सकते हैं कि ज़िंदगी में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, कुछ अचीवमेंट्स और कुछ मशहूर शख्सियतों के ताल्लुक से भी आप हमें मैसेज पहुँचा सकते हैं, और हम आशा पारी के नगमे भी सुनेंगे. साथ ही साथ आज जो है के मेनन का भी जन्मदिन है. के मेनन एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जो कि 1966 में वो पैदा हुए हैं, एंड ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर द पावर हाउस एक्टिंग. सेवरल अनफॉरगेटेबल यू नो सीन्स एंड एक्टिंग ही हैज़ डन इट. बहुत ही शानदार से एक्टिंग रही है उनकी. तो उनकी फिल्मों से भी हम कुछ गाने आपके लिए प्ले करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा असर है आशा बारी की फ़िल्मों का वो अभी उतरा नहीं है, उसको भी बरकरार रखते हैं. तो के मेनन की और साथ ही साथ आशा बारी की फ़िल्मों के नगमे एक के बाद एक बारी बारी से हम प्ले करेंगे. मैं हूँ आपका रेडियो मैन, और शो है आपका दिल रुबानी, और मैं पहुँच रहा हूँ रेडियो की तरंगों के संग जो के है 101.9 के माध्यम से. तो चलिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को एक बार फिर से हम सुनते हैं.

0: जारे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा।
1: तो दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प सा गाना आपने सुना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। एंड वी वुड ट्राई टू ब्रिंग सम मोर वैल्यू टू द सॉन्ग्स। आशा पारेख की फिल्मों से हम चुनिंदा गाने ले रहे हैं। ये जो नगमा हमने लिया है लव इन टोक्यो, एक बार फिर से जॉय मुखर्जी के साथ वो नज़र आई। शंकर जयकिशन की मौसिकी, मोहम्मद रफ़ी का जादू भरा नगमा और शैलेंद्र के बोल, और इतना खूबसूरत नगमा जो दिल की गहराइयों से और बल्कि दिलों को छू जाता है। आजा रे आजरा लव इन टोक्यो, आशा पारेख की अदाएँ और उनके जज्बाती सफ़र को हम यहाँ पर आज याद कर रहे हैं। आशा पारेख के एक्सप्रेशन काफ़ी ग्रेसफुल, शाई, फुल ऑफ इनोसेंस और फुल ऑफ लॉन्गिंग एंड टेंडरनेस वाली कैफियत है लव इन टोक्यो। दरअसल जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर आधारित फिल्म है। प्रमोद चक्रवर्ती ने इसे डायरेक्ट किया था और ये फिल्म हिंदुस्तान के बाहर जापान में, जैसे कि नाम ही है टाइटल में टोक्यो, वहाँ पर शूट हुई। एग्जॉटिक चार्म है स्टोरी में। तो 60s में जापान जाना एक बड़ा कमाल था, शूटिंग करना भी एक बड़ी मेहनत का काम था, जहाँ पर आशा पारेख ने आशा का रोल की प्ले किया। एंड शी वॉज ऑल्सो कॉट बिटवीन रोमांस एंड फैमिली इंट्रीग। द फिल्म इज़ अ वाइब्रेंट स्टोरी टेलिंग, काफ़ी एग्जॉटिक लोकेशंस हैं, जापानीज, सायोनारा सायोनारा का भी एक गाना है, मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगा। एंड दिस वॉज शॉट एक्सटेंसिवली इन जापान एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू शोकेस इंटरनेशनल लोकेशन सो विविडली। शंकर जयकिशन की मौसिकी काफ़ी हिट रही और रफ़ी साहब को हमेशा के लिए, रोमांटिक ट्रैक्स के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आशा पारेख और जॉय मुखर्जी की केमिस्ट्री को भी काफ़ी टेंडरली तरीके से देखा गया, उनकी चार्म, उनकी केमिस्ट्री को याद किया गया। तो आचार्य आज जरा आ हमें याद दिलाता है कि असली मोहब्बत जो है वो दूरियों से के बावजूद दिल के साथ बंध जाती है, क्योंकि उसका जो ताल्लुक़ है वो दिल से है। आशा पारेख की अदाएँ इस गीत को हमेशा के लिए याद और बरकरार रखेंगी। आप अपने मैसेजेस हमें रवाना कीजिए, हम आपके मैसेजेस का इंतज़ार करेंगे। 1:11 हमारे पास हो रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा दूसरा नगमा। और हम चाहते हैं कि ये जो दूसरा नगमा है वो हम के मेनन की कुछ फिल्मों से लें। तो ये आपके लिए आ रहा है के मेनन की फिल्म से 40-84। 40-84 तो आपको पता है क्या होता है, तो उससे सुनते हैं ये गाना।

ऑलराइट, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, के मेनन की फिल्म का गाना बहुत ही शानदार तरीके से उसे दर्शाया गया, बनाया गया। ये जो है वो दरअसल 4084 का, आप क्या बोल देंगे, 4084, हवा हवा। जी हाँ, असल में 4084, इट वॉज नॉट सपोज टू बी रेड एज 4084, बल्कि 4084 का ये गाना है, आइकॉनिक गाना है। असल में उस ज़माने में जो पाकिस्तानी सिंगर थे हसन जहांगीर, उनके गाने को लेकर इसमें नीरज श्रीधर की आवाज़ में इलेक्ट्रो डिस्को पॉप में गाया गया, और काफ़ी दिलचस्प रहा है, क्योंकि दैट सिंथेसाइजर, ड्रम मशीन्स, डिस्को बीट्स और फ्रेश साउंड ऑफ साउथ एशिया, वोकल्स आर वेरी वेरी गुड, काफ़ी ज़बरदस्त है। और अब बिल्लू बादशाह में भी ये गाना कहीं ना कहीं दिखेगा, और मुबारक खान में भी ये गाना दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, तो 3-4 बार ये गाना हुआ है, तो ज़बरदस्त गाना है। चलिए, के मेनन की फिल्मों से कुछ और गाने हम सुनने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आपको सुनवाएंगे भी। तो आगे बढ़ते हैं और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, या फिर ये गाने के बाद हम लेंगे, तो तैयार रहिए।

0: ऑलराइट, ब्रिलियंट सॉन्ग, बहुत ही शानदार सा गाना आपने सुना, और वो गाना है हनीमून ट्रैवल से। और हनीमून ट्रैवल्स के मेनन की जो अदाकारी है उसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान करती है और बताती है। आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड इट। तो इस गाने की ख़ास बात क्या है आपको बताते हैं आप। तो पहली और सबसे अहम बात यह है कि ये जो रिदम है वो एक सेलिब्रेशन वाली है, सजना दी वारी वारी, हनीमून ट्रेवल्स वाली फिल्म। इट्स वन ऑफ दोज पंजाबी फ्लेवर डांस नंबर दैट कैप्चर्स द जॉय ऑफ लव, वेडिंग्स एंड टुगेदरनेस। एंड इट्स अ क्विर्की फिल्म जहाँ पर वेयर एवरी कपल हैज़ अ स्टोरी टू शेयर एंड एवरी सॉन्ग बिकम्स द हार्ट बीट ऑफ द सेलिब्रेशन। सुनिधि चौहान की खूबसूरत आवाज़, शांतनु मोहित्रा की मौसीकी से लबरेज, और गुलजार ने इसके बोल लिखे हैं। वाइब्रेंट एनर्जेटिक ट्रैक बहुत ज़बरदस्त हैं, कोरियोग्राफी भी काफ़ी कलरफुल हैं, स्टैंड आउट सेलिब्रेशन लगता है आपको हनीमून ट्रेवल्स में, है ना। जिसे डायरेक्ट किया रीमा काकती ने, एंड इट फॉलोज दी सिक्स न्यूली वेड कपल्स ऑन अ ग्रुप हनीमून ट्रिप टू गोवा एंड ईच वन हैविंग सम क्विर्की एंड सीक्रेट्स। के के मैनन कैरेक्टर, ही प्लेज पार्थो, अ कंजर्वेटिव बंगाली हस्बैंड हुज कंट्रोलिंग नेचर क्लैशेस विद हिज वाइफ मिली, जिसे प्ले किया राइमा सेन ने। फ्री स्पिरिटेड पर्सनैलिटी और सजना दी वारी वारी सॉन्ग काफ़ी रिजिडिटी कंट्रास्ट को दूर करता है, फेस्टिव मूड को ऐड करता है, ह्यूमर भी है, सब कुछ है, फ्रीडम इंडिविजुअलिटी और एम्पलीफाइंग एवरीथिंग, है ना, कमाल की बात। और के मैनन का परफॉर्मेंस काफ़ी नोटेड रहा है, काफ़ी इंटेंस भी रहा है, और कहीं ना कहीं फिल्म में एक लाइट हार्टेडनेस भी क्रिएट करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और गाने के मेनन से, फिर उसके बाद हम आशा बारे के गानों की तरफ रुख करते हैं।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.

0: मान गए हुजूर मान गए, पर अभी जी नहीं भरा। मिसरा एक बार और हो जाए क्यों भाई?
1: उनचा कोई मेरे नाम कर दिया।

Well, I like the song, which is always being very soft and so on. And that was really, really a treasureful song that you just listened to. काफी बेहतरीन सा नगमा आपने सुना. गुंचा कोई मेरे नाम कर गया. मैं मेरी पत्नी और वो 2005 की ये फिल्म थी. और इस फिल्म में दोस्तों हम आपको बता दें कि के मेनन का भी एक अहम किरदार है. के मेनन का जो किरदार है ही प्लेज मिथिलेश. उसके पास काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है अपनी हाइट को लेके, अपनी अपियरेंस को लेके. तो जहाँ पर ह्यूमर भी है, पैथोस भी है. और इन गुंचा कोई मेरे नाम कर गया इज़ द कैरेक्टर्स इनोसेंस. और जहाँ पर बेहतरीन तरीके से उसे कैप्चर किया गया है, शोइंग द टेंडर साइड ऑफ इट. है ना कमाल की बात. द सॉन्ग बिकेम वन ऑफ मोहित चौहान्स अर्ली हिट्स. अगर आपको याद होगा तो तुमसे ही जब जब वी मेट वाला गाना आया था, फिर उससे पहले ये गाना आया था. द फिल्म वॉज प्रेज फॉर इट्स रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग एंड के मेनन की परफॉर्मेंस का क्या कहना, बहुत ही ज़बरदस्त थी. एंड इट वॉज मोस्ट अंडररेटेड रोमांटिक जेम्स, बट इट वॉज क्वाइट गुड. तो आगे बढ़ेंगे हम और सुनेंगे दूसरा जो नगमा है वो. और इस बार हमने लिया है वो बिस्मिल. हैदर फिल्म में भी के मेनन की बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग रही है. और उसी फिल्म से हम ये गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं.

0: rough.
1: All right, तो इतनी खूबसूरत तरीके से इसे फिल्माया गया और काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म रही है हैदर, और हैमलेट की ये कॉपी मानी जाती है। मैं इंडियन स्टोरीज़ को शेक्सपियर की स्टोरी से कैसे अडाप्ट करते हैं, विशाल भारद्वाज ने काफ़ी हुनरमंदी के साथ ऐसा किया, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के मेनन का भी बर्थडे है और साथ ही साथ आशा पारेख का। इन दोनों कलाकारों की फिल्मों को लेकर हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं और फिल्मी गाने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह की खूबसूरत आवाज़, विशाल भारद्वाज ने खुद ना सिर्फ इसको डायरेक्ट किया बल्कि उसकी म्यूज़िक कंपोजिशन भी की। गुलजार के लिरिक्स हैं, हाई एनर्जी लेवल वाली एक स्टाइल कव्वाली है। श्रीनगर के पास जो आपके स्नो से घिरा हुआ माहौल है उसको दर्शाया गया है, कहीं कहीं रुबाब और लोकल म्यूज़िक को भी वहाँ पर

0: ऑलराइट, तो चुपचाप रहने वाले ये कलाकार के मैनन जो हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर हैं। उनका भी आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर आज हम बातें कर रहे हैं उनकी कुछ ख़ास फिल्मों को लेकर। कैसे कैसे मशहूर लोग आज पैदा हुए हैं, चाहे वो गांधी जी होने दीजिए या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी और आशा पारेख, के मैनन, डॉन मैकलिन। वी हैव सेलिब्रेटेड द स्टोरीज दैट इंस्पायर। आपकी आवाज़, आपके रंग, जी हाँ, रेनबो के संग, यही है आज हमारा इस खूबसूरत शो का पैगाम। तो चलते चलते, क्योंकि मेरी दोस्त और ख़ास दोस्त रेणुका यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं, सो आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द हॉट सीट टू हर, बट आई एम गोइंग टू प्ले थ्री और फोर सॉन्ग्स दैट शी वुड ऑल्सो बी थॉरली एन्जॉइंग इट। सो अंटिल वी मीट, इट्स गुड बाय फ्रॉम मी टू यू, हास्ता ला विस्टा बेबी, adios amigos, and we'll meet very soon. So until then, enjoy this lovely day. It's a holiday. And good afternoon, everybody. This is your radio man signing off. And अच्छा तो हम चलते हैं।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अनुपम पाठक. हम लेकर आ गए आपके लिए ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन की कि कैसा रहा अभी तक का सफर. तो आपको बता दें कि वॉलीबॉल के अंदर भारत ने साउथ कोरिया को 3-1 से इन द मेंस वॉलीबॉल 5th-8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच में हरा कर जीत दर्ज कर ली. इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23. इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23.
1: और अब पांचवें छठे स्थान के लिए भारत को मुकाबला करना होगा. लेकिन इस समय सारी निगाहें जो भी खेल प्रेमी हैं उनकी इस बात पे जमी है कि क्या होगा जब हॉकी का मैच शुरू होगा और जब खत्म होगा तो स्कोर लाइन क्या होगी. हर एक के मन में दिल में तमन्ना यही है कि भारत की लड़कियां एक स्वर्ण पदक और लेकर आएं. और आज के दिन की जैसे शुरुआत हुई थी स्वर्ण पदकों की झड़ी के साथ, एक के बाद एक स्वर्ण पदक आए हैं, तो भारत की लड़कियां हॉकी में भी स्वर्ण पदक लेकर आएं. शुरुआत हो गई है, अभी बस सीटी बजी है, लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है और 1 मिनट हुआ है. जाहिर सी बात है स्कोर 0-0 है. अभी तक कोई भी मूव नहीं बना है इस समय तक किसी भी टीम की ओर से.
0: राइट, होपिंग दैट इंडिया पुट अप अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना विल नॉट प्रूव टू बी एन ईजी कॉम्पिटिटर टूडे, स्पेशली इन द फाइनल. बट क्योंकि आज अनुपम ने बताया कि किस तरह से दिन की शुरुआत रही, मेडल्स की बौछार होती रही है आर्चरी में. आज हमने देखा शुरुआत हुई दिन से जहाँ वुमेन्स रिकर्व टीम हमारे लिए गोल्ड लेकर आई, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेन्स रिकर्व टीम फाइनल्स के अंदर भी हमें सिल्वर मेडल आज मिला. वहीं अभी रिसेंटली कंक्लूडेड रेसलिंग बाउट्स में सुजीत कलकर was up against Abdul Majid Kudiv, who is from Tajikistan, in the men's freestyle 65 kg final, where Sujit Kalkal bought India the gold medal by defeating his Tajikistan opponent 10-9, making a very strong comeback, being 9-2 down. जी हाँ, 9-2 से पीछे थे और वहां से comeback करके finally he was able to defeat his Tajik opponent 10-9. What better than that? And also let's tell you all that Abhi Dipanshi also has kept the medal hopes for India up and alive, because she had been dominating Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kg repercharge. She secured a 10-0 victory by technical superiority earlier in the day to book a place in the bronze medal bout. Aur unka bhi ab bout aane wala hai thodi hi der mein dosto, at 3:58 PM Indian Standard Time. So he is hoping and keeping the fingers crossed, Anupam, that Dipanshi should be getting us a bronze medal tonight.
1: Bilkul aa sakta hai aur aaj wo lucky bhi rahi hain is mamle mein ki Japan ki Susaki Mui se unka muqabla hua tha. Pehle hi jo unki bout thi wahi haar gayi thi aaj wo. Lekin 50 किलो के इसमें दीपांशी को अगर आपने देखा है क्या, लगता है इतनी छोटी सी बच्ची, 16 साल की लड़की, और वो कमाल करके दिखा रही है. इस समय देश की सबसे उभरती खेल प्रतिभाओं में अगर आप गिनती पे गिनिए नाम, उंगलियों पर गिनने की कोशिश करिए, तो उसमें दीपांशी का नाम आता है. तो जो जापान की पहलवान थी वो पहुंच गई फाइनल तक. तो फिर मौका मिला रिपचैज में दीपांशी को, जहां उसने कोई चूक नहीं की और ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसका मुकाबला होना है. लगता है मुझे इस हॉकी का मैच जब तक ख़त्म होने वाला होगा तब तक शायद वो बाउट भी हो जाए. और आपने सुजीत की बात की, जी सुजीत कलकल की बात तो हम बार बार बार बार करना चाहेंगे. आज सबको लगने लगा था, हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये बाउट तो सुजीत के हाथ से गई. 0-2 से पीछे था, इसके पहले 8 अंक हो चुके थे और उसको क्या करेगा. लेकिन एक ही आदमी था जिसको भरोसा था, नहीं अभी मैं वापसी कर सकता हूँ, एक भी अंक और गंवाते तो फिर मामला पलट जाता. लेकिन उन्होंने वो एक अंक आने ही नहीं दिया और एक के बाद एक वो दांव चले, वो मूव किए पैर के ऊपर, खास तौर से उनके जो 3 आक्रमण उन्होंने किए थे जिसपे 2-2-2 6 अंक उन्होंने कमाए, कुल मिला के एक साथ उन्होंने 8 अंक एक के बाद एक कमाए.

0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल. मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक. एंड द बिग न्यूज जो हम दोनों आपके लिए अभी लेकर आ रहे हैं वो ये है कि भारतीय महिलाओं का फाइनल गोल्ड मेडल का मुकाबला आज चल रहा है भारत और चाइना के बीच में.
1: जी बिल्कुल, जिस समय हमने अपनी पिछली अपडेट खत्म की थी उसी समय शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की. भारत स्वर्ण पदक की तलाश में, जो उसने आखिरी बार 1982 में जीता था, वही चीन है डिफेंडिंग चैंपियन.

0: भारत पूरी ताकत लगा दे रहा है कि चीन को आगे ना बढ़ने दे, और मजे की बात कह रही है आज लगता है जो किस्मत की देवी होती है वो भी मेहरबान है, लेकिन वो मेहरबान उन पर होती है जो मेहनत करते हैं, और भारतीय टीम पूरी मशक्कत के साथ इस मैच में बने रहने का प्रयास कर रही है। हुआ यह है कि पहले क्वार्टर में ही बहुत शानदार मौका मिल गया भारत को, और भारत ने कोई चूक नहीं की, और लाल रंग सियामी ने अब जो अपना 200वां मैच खेल रही हैं आज, उन्होंने एक रिकर्व पास पर क्या जबरदस्त शॉट लगाया जो किसी भी गोलकीपर को रोकना बहुत मुश्किल होता, और भारत 1-0 से आगे हो गया। उसके बाद से भारत डिफेंस में ज्यादा है, उतने मूव नहीं बना रहा है, चीन पूरी कोशिश कर रहा है। 5 पेनल्टी कॉर्नर चीन को मिल चुके हैं, भारत के हिस्से में सिर्फ एक आया है, और आप विश्वास करेंगे दूसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला चीन को, और उसको सविता पूनिया ने एक बिल्कुल जिसको कहते ना अकल्पनीय सा सेव करके दिखाया, जैसे उनको पता था कि ये शॉट कहाँ आने वाला है और किस जगह आएगा। अपने ग्लव्स में गेंद को रोका और चीन को बराबरी करने से रोक दिया। उसके बाद से चीन लगातार हमले कर रहा है, लेकिन भारत अपनी इस लीड को बरकरार रखे हुए है। पोजिशन चीन के पास ज्यादा है, लेकिन स्कोर लाइन भारत के पक्ष में। अब हाफ टाइम हो चुका है, और दूसरे हिस्से में यानी जो तीसरा क्वार्टर होता है उसका भी आधा वक्त हो चुका है। लीड अभी भी 1-0 चीन।
1: Yeah, hoping that the stars align today for the Indian hockey women's team and that we are able to get the gold in this. All eyes are right now on the screen and hopefully in the next maximum 30 minutes, 20 to 25 minutes, we'll get to have the result. लेकिन आपको ये बता दें क्योंकि आज के दिन का ये गोल्ड का मुकाबला है, तो आज काफी सारे पदक भी भारतीयों के नाम लगे हैं अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में। आर्चरी के अंदर हमने देखा कि कैसे वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम आज गोल्ड मेडल लेकर आई, हमारे लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो भारत इस तरह के इवेंट के फाइनल्स में भी पहुंचा। मैं बात कर रही हूं वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। वहीं रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेंस रिकर्व टीम फाइनल के अंदर आज भारत को 2 सिल्वर भी मिले। एंड द अमेजिंग थिंग हैज बीन कि डिंजी के इवेंट में भी यानी सेलिंग के इवेंट में भी भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया नेत्रा कुमानन ने। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैड अदर इवेंट्स इन विच द मेडल्स केप्ट ऑन पोरिंग इन। इन बॉक्सिंग वी हैड इंडियाज लवलीना बोरगोहेन हु गॉट the gold for India in the 75 kilogram category defeating China's Bao Zi, and then uske baad humne dekha Parveen Hooda bhi hamare liye aaj gold lekar aayi in by a split decision of 3-2 that went in favor of the Indian. And finally we had Ankush Pangal who was up against Kim Min Seong in the men's 80 kilogram final, aur uske andar bhi aaj Bharat ko gold medal mila. To overall Anupam, एक अभी मैंने छोड़ दिया इवेंट रेसलिंग का आपके लिए, लेकिन दिन बहुत खूबसूरत रहा है।
0: बहुत खूबसूरत दिन आज पदकों के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया दिन रहा है, और ये जो स्वर्ण पदक है ये सुजीत कलकल ने दिलाया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में, और क्या जबरदस्त उन्होंने मैच खेले, एक के बाद एक 4 बाउट जीते, फाइनल में पहुंचे, और उसके पहले सेमीफाइनल में उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया। शायद उनकी वो कसर दूर हो गई होगी जिसमें वो ओलंपिक क्वालिफाई करने में बस किस्मत की वजह से चूक गए थे, एक बार तो हवाई जहाज ने डिले कर दिया, वो क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लेने ही नहीं जा पाए थे, तो शायद वो कसर खत्म हो गई होगी, और उसके बाद स्वर्ण पदक जीत कर तो हो ही गई, क्योंकि क्या जबरदस्त उन्होंने फाइनल खेला तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीप के विरुद्ध। एकदम पीछे थे, किसी को शायद उम्मीद न रही हो कि अब जीत सकते हैं, 7 अंकों का अंतर आ गया था, 1 अंक और चाहिए था विपक्षी को, वहां से वापसी की, और एक के बाद एक अंक बनाते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में किया।
1: जी, एंड वेरी क्विकली टू सम इट अप, अभी भी थर्ड क्वार्टर समाप्त होने में दोस्तों अमूमन 4:30 ही बचे हैं, और अगर ये क्वार्टर भी गोललेस जाता है तो भारत अपनी एक गोल की लीड बरकरार रखेगा चाइना के ऊपर। चाइना को अभी भी एक गोल करना होगा हॉकी के इस फाइनल मैच में जो गोल्ड मेडल का मैच हो रहा है भारतीय महिलाओं का हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। तो आखिरी क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि चाइना हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव आए, बिकॉज दे वुड देन वांट टू एटलीस्ट टाई द स्कोर सो दैट इट कैन गो इनटू शूट आउट, लेकिन वो तो समय ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आज भारत ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहता है तो पहले तो 1982 के बाद अब ये पहली बार होगा जब भारत फिर से एक गोल्ड मेडल लेकर आएगा हॉकी में, और उसके साथ साथ भारत फिर मेडल टेबल में भी दोस्तों 16 गोल्ड मेडल्स की बदौलत हो सकता है कि उज्बेकिस्तान के साथ स्वॉपिंग कर पाए। अभी भी उज्बेकिस्तान के पास 17 गोल्ड मेडल बने हुए, भारत के 15 है, भारत को 2 गोल्ड मेडल दौड़ जीतने उज्बेकिस्तान के साथ बराबरी करने में, और उसके बाद विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस, बट एटलीस्ट दिस गोल्ड

0: got the goal very early on in the first quarter itself. But after that, the Indian defense stepped up, and a beautiful penalty stroke defense that Sabata Punia did for us early part of the game definitely went long way in helping solidify India's chances towards making sure that the defense was all round surrounded the Chinese and never let the China make an entry into the game. China got several penalty corners also, but they could not even convert one penalty corner in their favor. 5 penalty corners unko mile first half ke andar hi, aur fir bhi usko bhi wo convert nahi kar paya. Humne dekha ki by the end, jo kehte hai na, last quarter mein China itna zyada desperate ho gaya tha ki they put everything into the attack. Unhone apne goalkeeper ko bhi bahar karwa diya and unki jagah ek player le aaye just to go all in, lekin fir bhi wo wahan par goal score nahi kar paye to level the score. As a result, the 44-year-old Wade, जी हाँ, 1982 में भारत को पिछली बार या आखिरी बार गोल्ड मिला था, और आज भारतीय महिलाओं ने ये ड्राउट खत्म कर दिया दोस्तों. They have broken this drought after 44 years to help India get that coveted gold medal in the Asian Games. And as Anupam just mentioned, this also cuts our ticket to the 2028 Olympics and the big one that comes as for us. A lot of changes, positive changes that we see now in this team. आप ये देखिए, चाइना के पास बॉल पोजीशन भी भारत से ज्यादा ही रहा. 52% तक चाइना के पास बॉल पोजीशन रहा, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए. समाओ हमने आज देखा, और एक चीज सामने जो आई अनुपम, वो ये थी कि चाइना का हमेशा से ही डिफेंस स्ट्रांग रहा है, अटैक उनका स्ट्रांग पॉइंट रहा नहीं है, लेकिन आज वो पहले से ही पहले क्वार्टर में ही बैकफुट पे आ गए थे बिकॉज भारत ने गोल दाग दिया था. तो आज उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि अटैक करना ही करना था, और समहाउ इंडिया ने उसके बाद अपने डिफेंस को इतना प्यारा रखा कि चाइना को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो एक एक की बराबरी भी कर सके.
1: दरअसल पूरा मैच अगर आप देखिए तो आज भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ही अलग. चीन को चौंकाने वाली रणनीति उन्होंने बनाई, और किस्मत ने साथ ये दिया कि अर्ली गोल आ गया बहुत पहले ही, और क्या जबरदस्त गोल था, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल. लाल रंग सियामी ने किया था, अपना 200वां मैच खेल रही थी आज, और रिवर्स शॉट लिया था उन्होंने डी के भीतर, और उछलता हुआ शॉट, ऐसा शॉट जिसपे शायद बड़े से बड़ा गोलकीपर भी उसको शायद ही रोक पाए. वो जो बढ़त मिली उसके बाद से भारतीय टीम ने अपना गियर ही चेंज कर दिया.
0: Right.
1: चाइना का डिफेंस बहुत अच्छा है, उनका गोलकीपर दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर्स में है. भारत ने कहा अब हमने ये लीड ले ली, अब हम भले आप हाफ में खेलते रहें या हम पर अटैक करें, हम अपने डिफेंस को एकदम मजबूत कर लेंगे और आपको गोल नहीं करने देंगे. और एक शानदार क्षण और था जब सविता पूनिया ने पहले क्वार्टर में बिच्छू थी गोलकीपर, दूसरे क्वार्टर में गोलकीपर बदला गया, सविता पूनिया को लाया गया, और पेनल्टी स्ट्रोक मिला. देखिए पेनल्टी स्ट्रोक में हॉकी में उसको रोक लेना, और ऐसा रोकना कि अंधा चुक्की नहीं है, वो साफ पता है जैसे उसको कि ये शॉट यहीं आने वाला है, लेफ्ट साइड में मेरे आने वाला है, किनारे आने वाला है, इतना किस तेजी के साथ आने वाला है, गजब का डिफेंस. तो शायद भारतीय टीम उसके बाद बहुत जोश में आ गई, और चीन का एंड में आपने बताया इन्होंने अटैक बहुत किया. मुश्किल होता है इस रणनीति पे खेलना कि हम सिर्फ डिफेंड करेंगे. एक बार लीड ले लिया, एक गोल की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती, लेकिन हम लीड आ गई है, हम इसी को डिफेंड करेंगे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, हम 40 मिनट तक डिफेंड करेंगे.
0: Yes.
1: कमाल करके दिखाया आज.
0: Of course, India had their priority straight today. गोल हो चुका है, उसके बाद अपने डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि सामने वाली ऑपोजिशन को मैच के अंदर आने का मौका ही नहीं दो. एंड दे जस्ट वेंट ऑल आउट ऑन द डिफेंस एंड वर एबल टू देन कीप दैट लीड मेंटेन टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी लास्ट सेकेंड, एंड thereby history has been created, ladies and gentlemen, to all our lovely listeners, because the Indian women's hockey team has bought us that gold after 44 years.
1: Hey? आज का छठा स्वर्ण पदक, आज का दिन तो गजब रहा है भारतीयों के लिए पदकों के हिसाब से.
0: Yes, a quick wrap on the medal table also over here. इसके साथ ही आज अब भारत के सारे इवेंट समाप्त हो गए. भारत की पोजीशन अब 5वें स्थान पर है, जिसमें है उनके पास 16 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 76 मेडल्स. आपको बता दें आज जो मेडल्स आए हैं, हॉकी में हमारे पास एक गोल्ड आ गया, बॉक्सिंग में हमारे पास 3 गोल्ड आए, रेसलिंग में 1 गोल्ड आया, आर्चरी में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, सेलिंग में 1 ब्रॉन्ज, और सेपक तक्रो में 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 16 गोल्ड, प्लेसिंग इंडिया ऑन द 5th पोजीशन. दैट इज ऑल दैट वी हैड फॉर यू फॉर राइट नाउ. दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक साइनिंग ऑफ. विल बी ज्वाइनिंग यू बैक एट द 7:30 अपडेट विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड अ रैप अप ऑफ द डे. थैंक यू सो मच.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। और भारत के लिहाज से देखें अगर तो आज की स्पर्धाएं समाप्त हो चुकी हैं और बहुत शानदार दिन रहा है आज, बल्कि अब तक इनके इन एशियाई खेलों में आज का सबसे बढ़िया दिन कहा जाएगा, क्योंकि 6 स्वर्ण पदक आए हैं, 2 रजत पदक आए हैं, 2 कांस्य पदक आए हैं। एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है, महिला हॉकी का स्वर्ण पदक, और इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते भारत की टीम जो है, महिलाओं की टीम, उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में सीधे प्रवेश मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। अब 2 साल होगा भारतीय टीम को तैयारियां करने के लिए मिलेगा, नए कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए मिलेगा, यानी पूरी तरह चाक चौबस्त होकर टीम जा सकती है। जबरदस्त मैच था, भारत ने बिल्कुल अलग रणनीति के साथ खेला। इसके पहले भारत ने गोलों की झड़ी लगा रखी थी पूल के मैचों में, लेकिन यहाँ पर आज चीन की जबरदस्त टीम सामने थी। चीन की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको उन्होंने जारी रखा। चीन को बिल्कुल उन्होंने कहना चाहिए आड़े हाथों लिया। अच्छी बात यह रही कि पहले क्वार्टर में ही भारत को मौका मिला, और क्या शानदार, शायद टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल कहा जाएगा, लाल रंग सियामी ने किया। रिवर्स स्टिक से बहुत शानदार रिवर्स शॉट लगाया था उन्होंने, थोड़ा उठता हुआ बिल्कुल गोलकीपर को चकमा देता हुआ पहुंच गया।

0: किया था। उसके बाद से भारत ने अपनी रणनीति यह बदली कि पूरी तरह डिफेंस पे आ गए। इस एक गोल की लीड को, हॉकी में बहुत गोल होते हैं हम सब जानते हैं, उसको उन्होंने लगभग 3.5 क्वार्टर तक बनाए रखा। चीन ने बहुत आक्रमण किए, लेकिन आखिरकार वो फेल होता रहा क्योंकि भारतीय लड़कियों का डिफेंस बहुत मजबूत था। सुशीला ने बहुत अच्छा किया, नवनीत कौर ने बहुत शानदार किया। कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि आखिरी के करीब 4 मिनट तो गोलकीपर को ही हटा दिया गया, यानी 11 के 11 खिलाड़ी आक्रमण करेंगे, चीन के लिए गोल आए। तब भी भारतीयों ने आपा नहीं खोया, सिर्फ एक मूव बनाया, उनको समय बिताना था, वो 3.5 मिनट। शानदार मैच रहा हॉकी का। स्वर्ण पदक अब देखना है, कल भारत की टीम भी पुरुषों की, वो भी स्वर्ण पदक लेकर आए तो खुशी दुगनी हो जाएगी, पदकों की जोड़ी बन जाएगी। इसके पहले आज बहुत शानदार दिन बॉक्सिंग में रहा, लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स का अपना ये पहला स्वर्ण पदक उनके लिए था, मणिपुर की हैं। शानदार तरीके से उन्होंने आज अपनी फाइट लड़ी, बाउट लड़ी, 5-0, तीनों राउंड में लगातार उन्होंने प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा परवीन हुडा का स्वर्ण पदक था, थोड़ा मुश्किल से आया, 3-2 का स्प्लिट डिसीजन था, लेकिन परवीन जैसी आक्रामक वो खेलती हैं बिल्कुल वैसे ही रही, ताइपे की नीन चिन येन के विरुद्ध थी और उन्होंने भी दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। तीसरी बाउट में अंकुश पंघाल थे, हरियाणा से ही आते हैं, सेना में नौकरी करते हैं। अंकुश पंघाल ने अपने ऊपर काबू रखा, अपने स्टाइल को बिल्कुल नहीं चेंज किया, वो साउथ पा हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मुक्के बरसाए और उन्होंने भी इस बाउट को जीतकर भारत के लिए बॉक्सिंग में आज का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया 80 किलोग्राम में। आर्चरी में भारत की महिला टीम ने अंकिता भगत, कुमकुम महोद और कीर्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक पाया और सिल्वर आया मिश्रित में धीरज देवबुमरा और कुमकुम महोद के साथ, और इसके अलावा धीरज यशदीप भागे और नीरज चौहान की जोड़ी ने ईरान को परास्त करके पहले प्रवेश किया फाइनल में। वहां पर दक्षिण कोरिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, उससे वो परास्त हुए लेकिन रजत पदक पाया। कुश्ती में बहुत खास दिन रहा, इसलिए दीपांशी की पहले बात कर लें, बहुत नई लड़की है, बिल्कुल उभरती हुई लड़की है, 50 किलोग्राम भार वर्ग में वो पहले अपनी बाउट जापान की सुशाई यूई से हार गई, लेकिन उसके बाद उनको रिपेचेस में मौका मिला, उन्होंने अपनी बाउट जीती, ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला किया, लेकिन कजाक की जिनेब बायानोवा से परास्त हुई। उसके बाद 65 किलोग्राम वर्ग में अकल्पनीय चीज़ करके दिखाई सुजीत कलकल ने, 2-9 से पीछे होने के बाद भी, यानी बिल्कुल हर एक को लगने लगा था ये बाउट तो गई, ये कुश्ती तो सुजीत के हाथ से गई और स्वर्ण पदक तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या वापसी की है। कहते ना, एकदम जब बिल्कुल आप एकदम कोने पर पहुंच गए हैं, गिरने वाले हैं, कगार पे आ गए हार के, वहां से उन्होंने वापसी की, लगातार 8 अंक कमाए और सुजीत कलकल का ये स्वर्ण पदक बहुत बहुत दिनों तक बहुत याद रहेगा। इसके अलावा और भी भारत की ओर से बहुत अच्छी कुछ प्रदर्शन रहे हैं। सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने डिंगी में, उन्होंने जो पहले कहलाती थी लेज़र रेस कहाया करती थी ICLA की स्पर्धा, उसमें उन्होंने कांस्य पदक पाया। सिपक टोकरा में भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन रहा है भारत के लिए। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कल क्रिकेट का मैच है, फाइनल मैच है पाकिस्तान के विरुद्ध। हॉकी में मलेशिया के विरुद्ध पुरुष की टीम उतरेगी। आर्चरी में कुमकुम महोद, धीरज देव बुमराह, नीरज चौहान कोशिश करेंगे स्वर्ण पदक पाने की। कुश्ती में 5 पहलवान हैं, सागर जगलान, अंतिम पंघाल, अमन, दीपक पुनिया, मनीषा। इसके अलावा गोल्फ में प्रणवी क्या करती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं भारत के लिए। R7, Rugby 7, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल में भी होंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छे स्थान पर आ गई है, 5वें स्थान पर आ गई है, 16 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 35 कांस्य पदकों के साथ 76 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। तो अब आपको ये बताते हुए कि हम कल फिर हाजिर होंगे 9:30 बजे अपने इस अपडेट की श्रृंखला के साथ। अब अनुपम पाठक यानी मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेनबो पर। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 12 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है और प्रोग्राम नए रंग का समय इनकी खिदमत में सनालमास बावजीर का पुरखलूस आदाब पेश है और प्रोग्राम नए रंग।

और फिर आप सुनेंगे गीत सुरीले गाता जा के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और आज हम बात करेंगे गांधी जयंती पर

0: तो आइए दोस्तों, अब आप सुनेंगे हरफे ताबिंदा।
1: वेलनेस यानी सेहतमंद, मुतवाजन और खुशहाल जिंदगी। ये सिर्फ जिस्मानी सेहत का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है जिसमें इंसान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, जहनी तौर पर पुरसकून हो, जज्बाती तौर पर मुतवाजन हो, समाजी तौर पर मरबूत हो और रूहानी तौर पर मुतमाइन हो। वेलनेस का मतलब एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें तवाज़ुन, सुकून, मुस्बित सोच शामिल हो। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सब किसी न किसी दबाव, परेशानी या बेचैनी का शिकार होते हैं। हम काम में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि खुद अपनी सेहत, जज्बात और रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन को जगा दें तो ज़िंदगी पुरसकून महसूस होती है, और ज़िंदगी में तवाज़ुन को जगह ना दे तो इसके नतायज मनफी निकलते हैं, जैसे जिस्मानी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, जहनी दबाव जिस्म को कमज़ोर करता है, ताल्लुकात मुतासिर होने लगते हैं। रोज़ हम ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हैं और ज़िंदगी में खुशियां ख़त्म होती नज़र आती हैं। मुतवाजन ग़िज़ा और वर्जिश, नींद पूरी करना और वक्त पर तिब्बी मुआयना, ये सब जिस्मानी वेलनेस के लिए ज़रूरी है। मनफी सोच से बचना, मुस्बित रवैया अपनाना, तनाव को कम करना, वक्तन फवक्तन आराम करना, ये जहनी सुकून के लिए ज़रूरी है। अक्सर व पेशतर लोग अपनी मसरूफियात से दूरी इख्तियार करते हैं ताकि इनके अंदर एक अच्छी तब्दीली हो, एक नई सोच पैदा हो, जिसे अंग्रेज़ी में सेबेटिकल कहते हैं। और इसका आमतौर पर कोई चलन नज़र नहीं आता, लेकिन इस चीज़ को आला सतह पर लोग अपनाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने आप को अलग थलग करने के लिए। कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाते हैं या फिर अपने लिए वक्त निकालते हैं और कोई पुरसकून जगह तलाश करते हैं जहाँ पर ये वक्त गौर व फिक्र करते हैं और अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वेलनेस सिर्फ बीमारियों से बचाव का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मजमूई तर्ज ज़िंदगी है जिसमें जिस्मानी, जहनी और जज्बाती रूहानी सेहत शामिल है। एक सेहतमंद इंसान ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है और अपने ख़ानदान, माशरे और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दिल का सुकून और इत्मीनान तभी मुमकिन है जब इंसान अपने रब से जुड़ा हो। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर सेहत ना हो तो दुनिया की कोई भी कामयाबी या दौलत फ़ायदा नहीं दे सकती। आप चाहें कि हम अपनी ज़िंदगी में वेलनेस को जगा दें और ज़िंदगी के मामलों में तवाज़ुन रखें, ताल्लुकात को बेहतर बनाएं और आने वाले चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला करें, एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ दें, नौजवानों की बेहतर रहनुमाई करें ताकि इनके ज़रिए समाज में बेहतरी आए, तब्दीली आए, खुशहाली और अमन आए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौक़े पैदा हो सके। इसके अलावा दोस्तों, वेलनेस का काम है, वेलनेस की जो मशगूलियात है, ये हमें कोविड के बाद से नज़र आती हैं, जहां लोग अपनी सेहत को लेकर काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं और आए दिन इसके लिए कोशिश करते रहते हैं कि उनकी सेहत बरकरार रहे और उनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन रहे। इसीलिए अपनी वेलनेस के लिए या अपनी मुतवाजन ज़िंदगी के लिए हमें भरपूर कोशिश करना चाहिए ताकि हम अपने घर के लिए, अपने माशरे के लिए और अपने मुल्क के लिए एक अहम असासा साबित हो सकें।

0: सके।
1: जी हाँ दोस्तों, सैयद मंजूर अहमद से अभी आप सुन रहे थे हरफे ताबिंदा। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी बिल्कुल, हम आपसे ढेरों सारी बातें करेंगे और आगे हम बात करेंगे डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत इंटरव्यू, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगी अस्मा खान साहिबा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से लिया गया बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। संतोष आनंद की बोलों को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ सुरेश वाडकर की।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल रात 10 बजे आप सुनेंगे 20 एडिशन ऑफ एशिया गेम्स के डेली हाइलाइट्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
2: Mahila hockey ke final mein aaj Bharat ki ladkiyon ne ek bahut bada karnama kar dikhaya aur unke liye taaliyan hi taaliyan. Jitni bhi bajaiye kam hai. Team ko 1-0 se hara kar swarna padak apne naam kiya aur Los Angeles Olympic mein pratibhagita pakki kar li continental champion hone ke nate. Bhartiya hockey premiyon ke liye ek bahut tanav bhara khoon jamane wala romanch se bhara hua match tha ye. Pool level pe goal dagne wali ladkiyon ne mazboot team ke viruddh रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने

0: शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाई ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0। और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देख कर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का। और जैसे ही हूटर बजा, लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे, और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया, बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत, रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर जसाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजेय है। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत, रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
2: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगजाओ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी

0: भारतीय महिला बन गई, लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's quadrant teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: Sepak Takraw में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगू स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाईबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो

0: जापान ने शुरू से ही लीड ले ली थी। एक समय 12-8 से जापान आगे हो गया था, लेकिन भारतीयों ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और स्कोर 12-13 पर ला दिया, यानी अंतर सिर्फ एक अंक का। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन निर्णायक मौकों पर उनसे हुई चूक और जापान ने मौकों का फायदा उठाया, 15-13 से सेट और मैच जीत लिया। भारत ग्रुप में अपराजेय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और ये भारत का क्वाड्रेंट स्पर्धा में पहला पदक है और एशियन गेम्स के इतिहास में सेपक टाकरा में कुल मिलाकर तीसरा पदक। सेपक टाकरा टीम को बहुत साधुवाद।
1: We move on to the golf course, where the competition is heading towards its business end and the Indian contingent had plenty to play for in the round 3. Sakshi Mandwal has the details.
2: Pranavi Oars fired a 4 under 66 to take a 9-stroke lead heading

0: commanding 124-run semi-final victory over Sri Lanka and will now look to defend the Asian Games title they won in Hangzhou. The men's hockey team will also play for gold, with Malaysia awaiting India in the final. On the golf course, all eyes will be on Pranavi, who takes a 3-shot lead into the final round of the women's individual competition. There's a team medal in sight as well, with the Indian women currently second in the standings. There's more in archery to come as the focus shifts to individual recurve events. Wrestling returns with another 5 freestyle weight categories, while there are also medal opportunities across sailing and taekwondo, along with the concluding stages of women's rugby sevens. So, a day of history and gold medals for India comes to an end. But the Asian Games certainly aren't done yet. Tomorrow brings another huge day. We will bring you all of it right here on Akashvani. For now, from me Megha, editor Vishal Kumar and producer Shahnawaz Khan, it's a goodbye.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: अभी आप सुन रहे थे 20 एडिशंस ऑफ एशिया गेम्स का डेली हाइलाइट्स।
3: एफएम रेनबो 101.9
2: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं नित नए रंगों से सजा उर्दू प्रोग्राम नए रंग मेरे संग। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं डॉक्टर असमा खान से लिया गया डॉक्टर माइक पर इंटरव्यू। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें क्या विशेष जानकारी देती है।
4: सामईन, हमारे साथ हैं डॉक्टर असमा खान, जिनका तजुर्बा बहसियत माहिर अमराज निस्वा यानी एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट की हैसियत से तो है ही, और साथ में मेडिकल मैनेजमेंट का भी आप खासा तजुर्बा रखती हैं। आपने कई सालों तक या कुछ दहों तक हिंदुस्तान के बाहर खिदमात अंजाम दी हैं, और फिर एक समाजी जहतकार की हैसियत से आपने मुख्तलिफ कारनामे हाय अंजाम दिए, जिसके बदौलत आपको मुख्तलिफ सतहों पर अवार्ड्स से भी नवाजा गया। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर असमा खान बताएं कि आपका ये सफ़र कैसे रहा, बहैसियत एक डॉक्टर और फिर माहिरे अमराज निस्वान से होते हुए आपने एक समाजी जहतकार का रूप इख्तियार किया।
5: जी, थैंक यू मिस्टर हुसैनी साहब। एक्चुअली मैं आई एम बॉर्न इन हैदराबाद।
4: जी,
5: लेट मी कंटिन्यू इन दैट ओनली। बॉर्न इन हैदराबाद, ब्रॉट अप इन हैदराबाद, मैरिड, देन लेफ्ट टू ओमान। तो ओमान में आई स्टार्टेड माई अगेन कंटिन्यू माई स्टडीज देयर। ग्रेजुएशन मैंने वहाँ किया, MBBS वहाँ पे किया, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे किया, देन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ डॉक्टर देयर।
4: जी,
5: इन ओमान आई वॉज एक्टिव मेंबर ऑफ ओमान तेलुगु कम्युनिटी, जहाँ पे मोर देन 10,000 पीपल आर मेंबर्स देयर। जो भी तेलंगाना एंड आंध्रा के, देर ऑल मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी देयर। तो वहाँ पे दे हैव इनिशिएटेड ए श्री शक्ति अवार्ड, क्योंकि मैंने पढ़ाई करके वहाँ पे सोशल सर्विस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मेनी सोशल एक्टिविटीज़, इसलिए दे हैव गिवन मी द फर्स्ट ओमान श्री शक्ति अवार्ड। आई एम द रिसिपिएंट ऑफ दैट।
4: सो ये तो हैदराबाद के लिए भी बायस फ़ख्र बात है।
5: ऑफ कोर्स।
4: जी,
5: उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑपरेशंस फॉर माई ओन सेंटर, अल हकीम फर्टिलिटी सेंटर, विच आई वॉज मैनेजिंग। मेरे बच्चों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, तो आई हैव टू मूव टू हैदराबाद। सो आई मूव टू हैदराबाद 2 years बिफोर।
4: जी, हैदराबाद में जो एटमॉस्फियर है, इकोसिस्टम है, मेडिकल इकोसिस्टम, यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग इट एट ए वेरी डिफरेंट लेवल कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इसमें एडजस्ट होने और इसमें ढल जाने के लिए आपको कुछ दिक्कतें पेश आई, या फिर इट वॉज एन ईजी और स्मूथ सेलिंग फॉर यू?
5: नो नो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जहाँ पे ओमान में है, एवरी रूल एंड रेगुलेशंस दे प्रैक्टिस इट बहुत ही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। रूल इज अ सिस्टमेटिक रूल इज अ रूल देयर, कोई भी उसको ओवरपावर नहीं करेगा। यहाँ पे रूल नाम की चीज कुछ भी नहीं रहती है। इट इज लाइक व्हाट एवर यू से, एवरी डे वी कीप चेंजिंग।
4: स्टिल आई मीन स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन।
5: या ट्रांजिशन पीरियड बोल सकते हैं, वेयर एवरी लाइक सपोज यू आर इन अ हॉस्पिटल वेयर 10-15 पीपल आर वर्किंग, एंड इफ यू आर अ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय देयर, यू फील यू आर अ लीडर। सो इवन इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, इफ एनी सबऑर्डिनेट कम्स एंड

0: रिस्पॉन्स टू यू. दे फील ओके, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ तो मैं गलती भी कर सकता हूँ. दैट इज़ अ परसेप्शन ऑफ अ पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर. सो दे डोंट से वी डोंट फॉलो द रूल्स.
1: ये तो एट द ग्राउंड लेवल बहुत बड़ा डिफरेंस आपने नोटिस किया
0: जी
1: है. प्रोफेशनली स्पीकिंग, हाउ डू यू सी देर इज एनी डिस्टिंक्ट चेंज इन द ट्रीटमेंट बिहेवियर पैटर्न?
0: यस यस ऑफ कोर्स. ट्रीटमेंट बिहेवियर एंड पैटर्न, क्योंकि ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर इफ एनी पेशेंट इज कमिंग, देर इज़ अ प्रोटोकॉल दे फॉलो. लाइक पेशेंट हिस्ट्री से लेके, इफ़ यू आर एडवाइजिंग फॉर अ पेशेंट एनी सर्जरी और एनी थिंग, वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ अ पेशेंट. एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट वॉट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो. यहाँ पे उतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है, बिकॉज हियर ईच डॉक्टर सीज ऑलमोस्ट 20, 30, 40, 50, मोर देन 50 पेशेंट्स ऑल्सो सम डॉक्टर्स आर. सो वॉट इज़ द टाइम, क्वालिटी टाइम दे आर स्पेंडिंग विद ईच पेशेंट, दैट मैटर्स अ लॉट.
1: एग्जैक्टली,
0: नॉट मोर देन 5 मिनट्स. सो इन 5 मिनट्स दे ओनली फॉलो वॉट इज़ द प्रेजेंट सिम्टम्स.
1: आई सी.
0: दे ट्रीट यू विद द प्रेजेंट सिम्टम्स,
1: अच्छा,
0: दे डोंट गो बैक वॉट इज़ योर हिस्ट्री.
1: ये तो बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है
0: जी
1: जो आपने नोटिस भी किया है और फील भी किया है, क्योंकि आप दोनों तरह के एनवायरमेंट में काम कर चुकी हैं. आपको कब एहसास हुआ, ये कब लगा कि यस, एज ए सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट आपने फिर मैनेजमेंट की फील्ड अपनाने का फैसला कैसे लिया?
0: बिकॉज इंडिया का एंड गल्फ का मेडिकल फील्ड जो है,
1: जी
0: एग्जामिनेशन फील्ड या लाइसेंसिंग प्रोसेस है, बहुत डिफरेंस है. इफ़ आई कम हियर बिकॉज आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, मुझे यहाँ पे IMA का एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर विच आई हैव टू स्टडी फॉर 1 ईयर.
1: आई सी.
0: एक साल मुझे पढ़ के एग्जाम दे के देन आई हैव टू स्कोर द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, विच इज अ लेंथी प्रोसेस. दैट इज द रीजन आई चूज टू बी इन अ मैनेजमेंट.
1: कमिंग बैक टू योर स्पेशलाइज फील्ड दैट इज इनफर्टिलिटी,
0: जी
1: व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, और शुड आई से क्या आप समझते हैं कि सी चेंजेस हो रहे हैं इस फील्ड में?
0: अभी बहुत सारा ट्रेंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स सरोगेट मदर.
1: आई सी.
0: अभी शायद रिसेंटली देर इज अ बिल पास्ड इन राज्यसभा ऑल्सो विच इज पेंडिंग इन द पार्लियामेंट. द सरोगेट मदर हैज बिकम अ फैशनिस्टा एवरीवेयर. पीपल वॉन्टेड टू जस्ट गो फॉर अ सरोगेट मदर इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ. नाउ दैट इज गोइंग टू स्टॉप.
1: इसमें जो कानून साजी की गई है, जो बिल आपने कहा कि कानून बनने जा रहा है, तो ये किस हद तक रुकावट बनेगा सरोगेट मदर को?
0: रुकावट मतलब दे आर सेइंग लाइक, जैसा सरोगेट मदर अभी यहाँ से, जैसा कोई एजेंट्स है, दे आर रनिंग सरोगेट, दे हैव सो मेनी पीपल हु आर रेडी टू बिकम अ सरोगेट मदर. तो डायरेक्टली वॉट एवर द फाइनेंस सपोर्ट, इट इज नॉट गोइंग टू द सरोगेट मदर और हेल्थ केयर फैसिलिटी, द मिडिल मैन को जा रहा है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरोगेट मदर जब बनती है तो उनका पोस्ट डिलीवरी भी रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए. एट द सेम टाइम वी कांट से देर इज अ 10% चांसेस ऑफ डेथ ऑल्सो ड्यूरिंग डिलीवरी.
1: Exactly.
0: उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए, विच आर नॉट देयर एट द मोमेंट.
1: सो ये कानून में शामिल किया गया है.
0: यस.
1: सो इट इज
0: एंड ऑल्सो दे हैव डिफाइंड इट हैज टू बी ओनली अ रिलेटिव, फैमिली रिलेटिव कैन बिकम अ सरोगेट मदर, विच इज नॉट पॉसिबल, बट दे आर मेकिंग इट मैंडेटरी.
1: इफ दे हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सम डिसीज,
0: नॉट फैमिली हिस्ट्री, द रिलेटिव. नो, द रिलेटिव ऑफ अ फैमिली, लाइक जैसा कोई बहन है, भाभी है या आंटी है, कोई है, तो तुम्हारे फैमिली के लोग ही सरोगेट बन सकते हैं टू योर चाइल्ड, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रॉम अ फैमिली यू अगेन टेंड टू सी देम अगेन आफ्टर डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी. बच्चा बड़ा हो गया, कुछ हो गया, सपोज अपन ने कोई और भी बोल सकता है कि ओके शी इज योर बायोलॉजिकल मदर, सो विच इज ऑल्सो डिफिकल्टी फॉर द चाइल्ड. एट द सेम टाइम नो फैमिली मेंबर विल कम फॉरवर्ड टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड. दे हैव टू हैव सम सपोर्ट, राइट? मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए ही कोई करता है, हूएवर डज इट फॉर द मॉनिटरी बेनिफिट. सो दैट मे बी लिटिल डिफिकल्ट.
1: तो आप क्या समझते हैं कि इसके कुछ एथिकल इश्यूज या मॉरल इश्यूज भी हैं दैट गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड इन फ्रेमिंग दिस बिल?
0: दिस मेडिकल
1: ऑलमोस्ट वन डेकेड.
0: यस, वन डेकेड ऑलमोस्ट. द पार्लियामेंट बिल जो पास किया है उसके अंदर दे हैव नॉट डिफाइंड द बेनिफिट्स टू द सरोगेट मदर. दे हैव ओनली सेड कि रिलेटिव बनना चाहिए सो दैट द मॉनिटरी बेनिफिट नहीं रहना चाहिए वहां पे.
1: हाँ,
0: तो वो एक इज बिगेस्ट obligation abhi. I don't think so it will come forward.
1: Apart from becoming a surrogate mother, there are certain emotional issues involved also.
0: Yes, yes.
1: Wo address kiya hai?
0: Yes, address kiya hai. Definitely there should be a consent from a family. That lady has to be married. That lady should have children already before. One or two, whatever it is. You cannot take a surrogate mother who is an unmarried.
1: I see.
0: Or who is not having a children. Okay, she cannot give birth to her first child as a sort of

0: सरोगेट मदर.
1: यूजुअली व्हाट इज द डोमिनेंट फैक्टर, जो सबसे डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या होता है जब कोई कपल अप्रोच होता है आपसे कि यस वी नीड टू गो फॉर IVF?
0: नो, हम लोग को एक्चुअली ऑथेंटिकेट करना चाहिए कि वाई दे हैव टू गो फॉर सरोगेट मदर. दे कैन नॉट चूज टू गो फॉर अ सरोगेट मदर. देर शुड बी अ सर्टन रीजन फॉर अ फीमेल. शी कैन नॉट बेर अ चाइल्ड और शी हैज सम कॉम्प्लिकेशन इन द यूट्रस और शी इज हैविंग सम सिवियर वेयर ओबेसिटी और समथिंग वेयर शी कैन नॉट बेर अ चाइल्ड. तो डॉक्टर हैज टू गिव अ ऑथेंटिकेशन सेइंग यस शी इज नॉट एलिजिबल टू बिकम मदर. शी नीड्स अ सपोर्ट ऑफ अ सरोगेट मदर. सो दैट हैज टू बी बिकम मैंडेटरी.
1: So it is going to solve infertility issue, no doubt. क्या ये समझते हैं, आप समझते हैं कि इससे कुछ समाज में संतुलन बिगड़ने के भी चांसेस हैं, कुछ सामाजिक इश्यूज आने के भी चांसेस हैं? आई मीन टू से सोशल इश्यूज.
0: या सोशल इश्यूज तो डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड ग्रोज लिटिल बिगर, अगर उसको पता चलेगा कहीं से भी कि शी इज नॉट हर बायोलॉजिकल मदर और हूएवर इट इज, तो वो ट्राई करेगा उनको ढूंढने की. हॉस्पिटल को पता चलेगा तो हॉस्पिटल में आके पूछेगा. सो ही विल ट्राई टू फाइंड आउट. सो बाद में इश्यूज होंगे, पेरेंट्स को इश्यू हो गए, या नहीं तो सरोगेट मदर भी उनको शी कैन ब्लैकमेल कर सकते हैं कि ओके ठीक है, आई हैव गिवन बर्थ. सो दे हैव टू गो लीगली, दे हैव टू टेक अ कंसेंट इन अ लीगल वे.
1: सो यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द लीगल फ्रेमवर्क.
0: यस, देयर इज ICMR गाइडलाइंस. देयर इज ICMR गाइडलाइंस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल सर्विसेज गाइडलाइंस फॉर अ सरोगेट मदर. We follow that guidelines.
1: I see. Iska, where do you see this field going? I mean, what is the next level? Designer babies?
0: There is no designer babies. That is only a myth of a people. Designer babies, kaun kar sakta hai? It is only depends on how your parents are. Tumhare bachche wahi se aise hi honge. Until unless you choose a donor.
1: No,
0: the,
1: suppose...
0: Oocyte donor. Then only they will say, okay, we wanted a mother who can... You know, who's smart and also that she can produce a egg with her qualities. So they just choose a donor like that. There is no designer baby.
1: In future it may happen.
0: No. It's not possible.
1: As long as we have strict laws, it may not be possible. But medically it is possible.
0: Medically also, how you can design a baby? You cannot change the color of eyes of a child. You cannot change the color of their, you know, whatever the features and all. Kuch change na. Tum kaise change kar sakte ho? Until unless the couple are like that.
1: Okay.
0: You can choose the couple to have a child of your desire.
1: But there are certain social issues, there are ethical issues, there are moral issues, there are social issues, doubt about it. So we need to address all these issues before taking up any infertility case.
0: Of course.
1: So ye bahut hi important work aap kar rahi hain. Hyderabad as an infertility center, how it is growing?
0: हैदराबाद में बहुत सारे इन्फर्टिलिटी सेंटर्स है. देर इज़ लाइक एवरी लेन, एवरी गायनोकोलॉजिस्ट इज प्रैक्टिंग इन्फर्टिलिटी. सो आई एडवाइज द पेशेंट्स हूएवर इज गोइंग टू अ गायनोकोलॉजिस्ट, फाइंड आउट द डॉक्टर इज प्रैक्टिसिंग इन्फर्टिलिटी फ्रॉम हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी बेबीज शी हैज़ डिलीवर्ड थ्रू IVF, थ्रू IUI, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर शी हैज़ अ प्रॉपर लैब एंड एवरीथिंग. इन्फर्टिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी तुम 2 months का 3 months का कोर्स करके इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे दो. इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is completely a different subject where you have to have a lot of knowledge, a lot of experience to treat a patient.
1: आप खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, तो आवाम जब कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि हाँ हमको बच्चा, एक जज्बाती बात है कि कोई भी साहेब औलाद होना चाहता है, तो उसके पैरामीटर्स जो होते हैं, हाउ यू विल डिफरेंशिएट यस जेन्युइन ये केस में दम है या फिर ये कुछ ये लोग हिडन एजेंडा लेकर भी आते हैं?
0: ऐसा नहीं होता है. जब भी कपल आता है तो थरो इन्वेस्टिगेशंस होता है दोनों का. वेन एवर दे कम, पहले उनका कंप्लीट हिस्ट्री लिया जाता है कि वाई दे आर इनफर्टाइल. दे फाइंड आउट द रीज़न कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम किस में है, फादर में है, मदर में है, दोनों कपल्स में किसको है, हस्बैंड या वाइफ में किसको है, पता चलता है. बेस्ड ऑन दैट ओनली ट्रीटमेंट विल स्टार्ट. कभी कभी ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से क्योर हो सकता है. देर आर स्टेजेस रहता है. प्राइमरी पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी, देन विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट. ज़रूरी नहीं है कि सब लोग IVF के लिए ही जाए.
1: जी,
0: देर आर बेसिक ट्रीटमेंट लाइक इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन ओवल्यूशन बोलते हैं जिसको, ओनली विद मेडिकेशन दे कैन कंसीव. देन द नेक्स्ट स्टेज इज IUI, इंट्रायूटरिन इंसेमिनेशन बोलते हैं. देन द लास्ट स्टेज इज IVF.
1: आई सी. कमिंग टू द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, क्या ये आम शहरी के बस की बात है IVF?
0: नहीं.

0: But it is expensive, little expensive. Definitely not affordable to everyone. थोड़ा एक्सपेंसिव है. गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, लाइक
1: एस्पेक्ट ऑफ
0: जैसा
1: द
0: इंश्योरेंस नहीं रहता है इसका, दे डोंट रीएम्बर्स द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बिल्स जो भी रहता है, दे डोंट रीएम्बर्स. सो द पेशेंट हैज़ टू बेयर वॉट एवर द अमाउंट इज दे हैव टू बेयर.
1: सो मोस्टली जो प्रोफाइल आपके पास होता है पेशेंट्स का, दे बिलोंग टू सम अपर मिडिल क्लास और अपर
0: ऐसा
1: क्लास ऑफ
0: नहीं है,
1: द
0: लोअर मिडिल क्लास
1: सोसाइटी.
0: जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी दे यू नो बोरो द मनी, दे सेल देयर गोल्ड, दे सेल देयर हाउसेस
1: आई
0: बिकॉज दे
1: सी.
0: एट एनी कॉस्ट दे वॉन्टेड अ चाइल्ड.
1: दैट्स
0: सो दे फील
1: व्हाट.
0: ओके ठीक है, एक वो सोशल स्टिग्मा बन जाता है इफ़ यू नॉट हैविंग अ चाइल्ड, दैट मीन्स.
1: डॉक्टर असमा खान, आप बहुत तजुर्बा रखती हैं इस फील्ड में. इस बिल के पास हो जाने के बाद क्या समझते हैं कि ये बिजनेस ऑफ मेडिसिन, ये जो है
0: सरोगेट
1: इनफर्टिलिटी
0: में
1: का,
0: जी
1: ये इसको कुशन मिलेगा इस बिल के जरिए?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज द वॉट एवर दे हैव डिफाइंड उसके अंदर जो रिलेटिव करके रखा है वो रिलेटिव कैसे डिफाइन करोगे? अभी तुम फैमिली हिस्ट्री में थोड़ी जाओगे, फैमिली ट्री में जाओगे कि इफ शी सेइंग कि ओके ये मेरी बहन की भांजी है, भाभी की बहन है, भाभी की बहन की बेटी है, कोई भी हो सकता है.
1: एग्जैक्टली.
0: सो कोई भी आके बोल सकता है शी इज़ माई रिलेटिव, तो
1: अच्छा,
0: तुम डिफाइन तो नहीं कर सकते हो ना. सो दिस विल गो ऑन.
1: सो इट इज नॉट ए फुल प्रूफ मैकेनिज्म.
0: येस ऑफ कोर्स इट्स नॉट ए फुल प्रूफ मैकेनिज्म. अदरवाइज देर शुड बी सर्टन प्रोटोकॉल्स होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट. इफ़ यू आर टेकिंग ए सरोगेट मदर, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, उनका हस्बैंड का कंसेंट लो, एक लॉयर को अपॉइंट करो, हैव ए एग्रीमेंट बिटवीन द कपल एंड यू सो दैट टुमारो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड. एंड वॉट एवर द मॉनिटर बेनिफिट्स यू आर मेंशनिंग, मेंशन देयर, मेक श्योर कि शी इज़ रिसीविंग ए प्रॉपर हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो.
1: बहुत ही माहिराना आपने मशवरे दिए हमारे सामईन को. हम उम्मीद करते हैं कि आपके मशवरों पर अमल करते हुए सामईन बहुत ही मुस्तफीद होंगे और आपके मशवरों पर अमल करेंगे. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर असमा खान से लिया गया डॉक्टर माइक पर इंटरव्यू. हाँ भाई, स्टूडियोज की घड़ी हमारी ओर इशारा किए जा रही है कि अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का. अंतराल के उस पार आपसे होंगी ढेरों सारी बातें.

अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं मनचले नटखट गीत लेकर। भाई जब बात हो ही रही है मनचले गीत की, तो क्यों ना हम ये गीत सुनते चले।

0: रेनबो 101.9
1: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और इस गीतों के सफर में आज हम बात करेंगे गांधी जयंती पर सुरीले गीतों का सफर। शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और वक्फे के उस पार बातें होंगी गांधी जयंती पर।

हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं मन चले नटखट गीत और ढेरों सारी बातें लेकर। जैसा कि हमने वक्फे से पहले आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे गांधी जयंती पर। हाँ जी बिल्कुल, गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो हिंदुस्तान के बाबाए कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के

पोरबंदर में पैदा हुए। आपको हिंदुस्तान में बापू और बाबाए कौम के लकब से याद किया जाता है। जैसे कि हम तहरीके आज़ादी के हवाले से अगर बात करें तो गांधी जी ने अदम तशद्दुद और सत्याग्रह, सच्चाई पर इसरार के उसूलों पर अमल करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की क़यादत की। आपने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद की।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं गांधी जयंती की। जी हाँ दोस्तों, गांधी जयंती जो कि हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। जी हाँ, गांधी जी की तालीमात और नज़रियात के हवाले से अगर हम बात करें तो आपकी ज़िंदगी अमन

भाईचारे और सच्चाई पर मुबनी थी। आमसातपात के इम्तियाज के सख्त खिलाफ थे और अछूत उधार पर खास जोर दिया। आपके नजदीक तमाम इंसान बराबर के थे। स्वदेशी अशिया का इस्तेमाल और खादी का प्रचार आपके अहम मकासद में शामिल थे।

तो दोस्तों, सुरीले गीतों का सफर होता है यहीं पर अब खत्म। आइए अब सुनते हैं पयामे शब। तहरीर और पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जीती की।

0: जिंदगी जबर मुसलसिल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जिंदगी में मुश्किलात और नाइंसाफियां इंसान को थका देती हैं, लेकिन हमें अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ दुख और महरूमी के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जो गुजर गया उसे बदलना हमारे इख्तियार में नहीं, मगर आज के लम्हे को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। माजी की तकलीफों से सबक ले, मगर उन्हें अपने मुस्तकबिल की जंजीर ना बनने दें। जिंदगी की हर तकलीफ को सजा न समझें। बाज आजमाइशें इंसान को मजबूत और बाशऊर बनाने आती हैं। गुजरे हुए कल को कबूल करें और आने वाले कल को उम्मीद, हौसले और अमल से बेहतर बनाएं।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अर्थ प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इन मीटर्स पर। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर को दीजिए इजाजत।
2: बहादुरी और सोच बूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं है जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
3: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
2: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत

लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and that is that the international rules, the international orders must be abided, must be followed. When it comes to trade, WTO, of course, is the guiding authority. You know, everybody, all countries do respect the guidelines which are there from the WTO, and going against them will, of course, create a imbalance within the economic system as well, and that is where the entire crisis of dumping and trade distortions comes into effect. And this is really important right now as well, because given the constraint which is there right now on the global supply chains because of the ongoing conflicts both in the European theater and the Middle Eastern theater, this becomes really important, because there will be economies, there will be countries which will not be able to withstand these kind of economic onslaughts if they continue for long in such conditions.
1: Concerns about dumping and also about the predatory pricing as well.
0: Yes, indeed. That's what I'm saying. So in the present situation, wherein the smaller economies are already trying to stay afloat in the face of rising energy prices, in the face of pressure, undue pressure on global supply chains, and a lot of uncertainty as well in the trade and economy aspect globally, given the fact that the world powers, so-called economic world powers, are changing the rules of the games almost on a daily basis, if not a weekly basis. Statements coming in, they change a lot of stuff. So in that situation, it is imperative for everybody, all the countries specifically, to adhere to these principles which are already in place, so that the troubles for the lesser economically fortunate countries, or the developing economies, so to specifically, are not under undue duress or pressure.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. फ्रांस के विदेश मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है. विशाल जी, आप क्या कहेंगे, G20 के साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं भारत की तरफ से की जा रही हैं, जैसा कि अभी खबर में हमने देखा फ्रांस और कनाडा के साथ खास तौर पे. इससे भारत का जो अभी व्यापार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उससे भारत को किस तरह का लाभ पहुंचने की उम्मीद है?
0: देखिए, भारत ने बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक बेहतरीन आर्थिक रणनीति यहाँ अपनाई है, और आर्थिक मामलों में ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेड के लिहाज से, यानी कि व्यापार के लिहाज से, आप जितने ज़्यादा देशों के साथ अलग अलग तरीके से अपने समझौते बना पाएँ, अलग अलग तरीके से उनसे बातचीत करके उनका फ़ायदा और अपना फ़ायदा दोनों एक देख पाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है. जो मल्टीलेटरलिज्म जिसे कहा जाता है, उससे इतर जाके अब थोड़ा सा बायलैटरल कोऑपरेशन जो है, उस पर जोर ज़्यादा है. इसीलिए FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जैसे कनाडा के साथ CEPA जो बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस तरह के एग्रीमेंट्स पे चर्चा और इस तरह के एग्रीमेंट को मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पिछले 3 से 4 साल में हमने देखी है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उस पर ज़्यादा मोमेंटम हुआ है. कनाडा से बातचीत अभी जारी है, उसमें अलग अलग और किस तरह की उसमें जमाया घटा किया जा सकता है उस एग्रीमेंट में. उसके अलावा चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, या फिर और यूरोपीय जो बाकी

0: देश हैं उनके साथ हो, ब्रिटेन के साथ हमने एक समझौता किया, और भी ऐसे कई देश हैं, और अमेरिका के साथ एक अलग समझौते पे लगातार बातचीत चल रही है। उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ पर ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि हर इस वक्त आज की स्थिति में
1: जी
0: हर इकोनॉमी की तरह, हर देश की तरह भारत भी ये चाहता है कि उसके ऑप्शंस खुले हों, उसके विकल्प खुले हों, और उसकी जो जो व्यापारिक संगठन हैं या देसी कंपनियां हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कहें या हमारी जो बड़ी कंपनियां वो कहें, उन्हें और बेहतरीन मौके मिले, और हमारे देश में जो कंज्यूमर बैठा है उसको केवल बाजार के तौर पे न देखा जाए बल्कि उसे भी बेहतरीन क्वालिटी वाले विकल्प चुनने को मिले।
1: जी और अगर ख़ास तौर से हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, जो भारत के साथ समझौता जो FTA हुआ है, उसके क्या क्या आपको भारत के पक्ष में क्या परिणाम दिखाई देते हैं?
0: देखिए, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है, और सीधे तौर पर अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ FTA करते हैं तो यानी कि EU के अंडर आने वाले जितने भी देश हैं वो बाध्य होते हैं उस समझौते को मानने के लिए। अलग अलग देशों का अपना अलग अलग, जिसे कहा जाए, एक्सपर्टीज़ है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज़ है, कहीं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ है, किसी के पास साइंटिफिक जो R&D जिसे कहा जाए उसमें वो आगे बढ़कर काम कर रहा है। फ्रांस जैसे देश हैं जिनके साथ हमारा रक्षा समझौता अलग से है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में बल मिलता है, और ना केवल भारत का जो कंज्यूमर है उसे, या चाहे कंज्यूमर में आप चाहे सरकार मान लें या हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी माने क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा एक रक्षा समझौता है, बल्कि हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए बाजार, एक नया बाजार खुलता है। उनको अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं यानी कि अपनी गुणवत्ता को सुधारने के बाद बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अपनी एक पहचान बनानी है उसके लिए एक अलग बाजार मिलेगा, अलग मौका मिलेगा। केवल ये नहीं माना जा सकता कि आप सामान, अगर आपकी कंपनी का सामान अगर अमेरिका में बिकता है तो ही आप बड़ी
1: जी
0: कंपनी हैं। तो
1: जी
0: अगर उसके लिए विकल्प ज़्यादा खुलते हैं तो यानी कि मौके ज़्यादा मिलेंगे कंपनियों को और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को
1: The
0: होगा।
1: UK PM has also indicated, rather signaled, that he would like to join the EU. The country might, and we already have an agreement with UK, and that is going to be a feather in our cap once.
0: Well, it's going to be really interesting as well because that's a separate battle of wits which is going on there, because let's not forget that this was one particular topic on which the United Kingdom was almost split in between, and this time around perhaps they're taking a turnaround because of their internal domestic politics as well, because there are two parts of the kingdom perhaps which have not been in favor since day one, and seemingly they're still not in favor as well. So domestic issues, domestic pressures do tend to make international calls being made by sometimes leaders of the free world as well. Let's see how far the British Prime Minister can push this through.
1: So, and the minister is also focused quite a bit on the India-EU Free Trade Agreement and also SEPA. He wants these to be expedited. And
0: That's
1: rightfully so, because
0: yes, indeed, and it serves the purpose for both. When we talk about SEPA, it serves the purpose for both India and Canada, because let's not forget that the Canada was also on the short end of the stick when President Trump was going around brandishing his tariff stick. So and there was a lot of not so healthy exchange of words between both sides. So of course Canada would also want to go ahead and hedge its bets. That's one, and two, look for more sustained partnerships with perhaps more larger markets. That's one from their angle, and two, of course, they would also want to be there on the table and say that okay, fine, if it's not going our way, then we have somebody else to fall back upon. And in current economic scenario, I think apart from China, India is the other market to fall back upon.
1: और चलते हैं शेयर बाजार का हाल भी जान लेते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर शेयर इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार नहीं हुआ। बाजार सोमवार को फिर खुलेंगे। अवकाश से पहले बेंचमार्क सूचकांकों पर लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा और इनमें लगातार 8वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। इस अवसर पर आज भारतीय मुद्रा बाजार भी बंद रहे।

0: पिछले कारोबारी सत्र में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 96.31 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। विशाल जी, आप क्या कहेंगे? आज हालांकि शेयर बाजार बंद है, लेकिन लगातार 8 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव बना हुआ है और गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट को आप सिग्निफिकेंट तो है, बट देन इसका इम्पैक्ट किस तरह का आप देखते हैं?
1: देखिए, आंकड़ों को दो तरीके से देखा जाता है। हर बार जब हम इस कार्यक्रम पे आंकड़ों पे चर्चा करते हैं, और मैं हमेशा आंकड़ों के आधार पे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि लेकिन आंकड़ों को देखने का भी अपना नज़रिया है। अब अगर गिलास को आप देखें तो वो आधा गिलास खाली भी हो सकता है और आधा गिलास भरा भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने अभी बताए और जो आंकड़े जिन पर चर्चा भी की जा रही है, जिन पर लिखा भी जा रहा है, वो दुरुस्त हैं। यानी कि लगातार 8 हफ्ते तक बाजार में गिरावट दर्ज की गई और ऐसा लगभग 2 दशक के बाद ऐसा देखने को मिला है। लेकिन वो गिरावट कितनी है? नंबर एक, वो गिरावट लगभग 9% के आसपास है अगर मोटे तौर पे देखें तो। हाँ, इसमें यह भी सच है कि 52-week high यानी कि पूरे 52 हफ्ते का जो सबसे ऊंचा आंकड़ा था, उससे आप बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन अब इनके कारणों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान डालें तो समझ में आएगा कि क्या कोई नया फैक्टर ऐड हुआ है। जी नहीं, ये सब वही फैक्टर हैं जो लगभग पिछले एक साल से इन सभी फैक्टर से बाजार जूझ रहा था, चाहे वो FII का आउटफ्लो हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो जिसे कहा जाए हम सिग्नल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल सिग्नल्स जिसे कहा जा सकता है, मार्केट को क्यूज मिलते हैं, जो क्रूड ऑयल की कीमतों की हम बात करें, उसमें जिस तरह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ दिनों के लिए ऊपर जाती हैं और अगर वहाँ माहौल थोड़ा सा शांत रहता है तो कुछ दिनों के लिए नीचे आती हैं। यानी कि कोई एक सस्टेन्ड क्यू मार्केट को नहीं मिल रहा था, नंबर दो। और नंबर तीन अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे जैसे अब मोटे तौर पर कल से जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उनमें सब में ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अगर आंकड़े देखें तो उनमें उनके आंकड़े, उनकी जो बिकवाली है यानी कि उनके प्रोडक्ट्स की जो बिकवाली है, सेल जिसे सेल का आंकड़ा से कहें, वो तो बहुत ऊपर गया, लेकिन जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं थे जिस एक्सपेक्टेशंस पे शायद इन्वेस्टर्स चाहते थे। दूसरा, अगर वापस हम FII की तरफ जाएं तो वहां भी एक थोड़ी सी डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी इसलिए है कि सितंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बाजार से FII ने निकाला, यानी कि इक्विटी बेचकर निकाला, लेकिन प्राइमरी मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्हीं FII ने इन्वेस्ट भी किया। अब वो इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि US की जो बॉन्ड मार्केट है वहां उनको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर कहा जाएगा कि इक्विटी मार्केट से क्यों हटाया गया, तो हो सकता है, और हो सकता है कि ये आंकड़े भी बताते हैं कि जो लार्ज कैप जो है हमारे भारत के बाजार में, उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन्वेस्टर्स चाहते होंगे। तो ये पैसा लगाना और पैसा निकालना ये बाजार में निरंतर लगा रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। इसीलिए मेरा कहना है गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये अपने नजरिए पर निर्भर करता है और ये आपके रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक होराइजन के किस हद तक आप देख पाते हैं।
0: सो देयरफॉर विशाल, व्हिच डोमेस्टिक ट्रिगर्स शुड इन्वेस्टर्स वॉच आउट फॉर this next week, the RBI policy and its commentary, the FPI flow data, early Q2 earnings signals, or the macro data as you elucidated quite a bit on them. So what should I look out for while I'm thinking of investments next week?
1: When you talk about macro data, all of these are the factors. You can't overlook either of these factors. That's one. But two, if you're an investor, what are you looking out for? You're looking out for investing in a particular company, in a scrip, in a small cap company, in a mid cap company, in a large cap company. Somewhere you're looking to invest. So the larger part which you should look out for is to look for that particular company's financial health. That's one. Its capacity building. That's two. Its future horizon. That's three. And what does the sector say? The particular sector to which the company belongs. What do the policies say? All the other larger data is creating a larger picture. But we are not investing into the larger picture as investors. We small investors, retail investors. I'm looking at it from their perspective. I'm not looking at it from FII's perspectives here. So I should be looking as an investor to the individual script which I'm going to invest in, and then take a concerted decision, because ultimately the entire atmosphere which is being created, that will of course affect my investment, but that will of course affect the investment of the entire market as well. Largely what will affect my investment more

0: is whether the company which I have invested in has the potential to grow, has the wherewithal to grow, does its management has the willpower to go ahead and take those calls which need to be taken in that particular sector.
1: Okay. Now, very important is that the key concern for the market is, I believe, not oil pressure alone, but the combined pressure from elevated bond yields, tight global liquidity, and the geopolitical uncertainty. While softer crude prices, Vishal, can improve, shipments can be constructive, higher yields raise the cost of capital, compress equity valuations, and make fixed income assets relatively more attractive. So how should I react when I talk about the elevated bond or look at the elevated bond yields?
0: I think this can be answered in just two, three sentences, because the bond yields is something which is a larger game played well beyond the control of even the markets as well, because there are larger economic interests of specific countries which are involved, which then drive the bond yields of either on this end or on that end as well. We should be on the lookout, be concerned about it as well. But that's not the only factor. So, of course, we should not be very worried about it unless we are, unless somebody is a huge FII investor and perhaps maybe, moving
1: should
0: in.
1: Should I be worried about FII's leaving?
0: Not at all.
1: 26,000 crores is what
0: not a big picture. Not a big picture, I must tell you, because, in the past, there have been days wherein 30,000 crore rupees have moved out of the market. Next day, 25,000 crore rupees have come in.
2: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 2.6%, जापान का निकेई 0.9% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% नीचे रहा. वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और ताइवान का ताइएक्स 0.2% चढ़ा. इस बीच अवकाश के कारण चीन के बाजार बंद रहे. विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे एशिया और यूरोप के बाजारों की जो आज की परफॉर्मेंस है उसके बारे में?
0: देखिए, मिश्रित नतीजा है और मैं कहूंगा कि ना ही तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद से बढ़ के है किसी मार्केट में और ना ही उम्मीद से बहुत ज्यादा कम है. हालांकि अमेरिकी बाजार का जो रुख है वो थोड़ा पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि वहां से हो सकता है कि सोमवार को कुछ क्यू भारतीय बाजारों को भी मिले और खासतौर पर जो एम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं जिनमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है अमेरिकी बाजार में और फेडरल रिजर्व का जो हाल ही का जो फैसला था वो और थोड़ा सा जो एक प्रेशर जो बन रहा है वहां पे, क्योंकि अभी भी वहां के एनालिसिस के मुताबिक लगभग 25-30% उम्मीद ये है कि जो अक्टूबर में एक बार फिर से फेड की बैठक होगी तो उसमें फिर थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो सकती है जो ब्याज दरें हैं उनमें. तो ये सब क्यूज हैं जिनका बेनिफिट मिल सकता है. बाकी निक्के हैंगसेंग और कॉस्पी इन सब में जो चल रहा है वो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है प्लस और माइनस में, तो ये माना जा सकता है कि सब ठीक है, नजर बनाए रखें.
1: जी, मूविंग ऑन, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड शार्पली टुडे. Brent crude was trading 2.6% down at $99.64 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 4% lower at $89.13 per barrel at the time of writing this report. Vishal, India imports most of its crude.
0: Yeah, approximately more than 80%.
1: Yeah. So how does a $10 move in oil mean for inflation, the current account deficit or the GDP growth?
0: It's a huge number to add if you look at it that way. But then there are countermeasures also which are always put in place. The Indian oil marketing companies do absorb most of the shock, as the government has pointed out time and again. But to what extent and up till what level will it happen? Because just recently, the ATF prices and the commercial LPG prices were increased. So slowly, the pressure on these oil marketing companies also need to be released. They can't always, foot the bill. But yes, these numbers might seem small, but given, if you take a look at the larger bill इट लुक्स लाइक इट्स प्रीटी ह्यूज.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचा इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा. इसके तहत 2000 रुपए तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा. भुगतान शुल्क को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक खबरों के बीच सरकार ने लोगों

0: से अपील की है कि वे अपुष्ट संदेशों को आगे न भेजें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
1: Country's foreign exchange reserves declined $18.3 billion to $747.5 billion during the week ended 25th of September. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, dropped by $15.5 billion to $615.4 billion during the week. Gold reserves dropped by $2.5 billion to $108.7 billion. Special drawing rights fell by $97 million to $18.64 billion. Country's reserve position with the International Monetary Fund dipped by $86 million to $4.8 billion. Vishal, how do you see this? Very, very briefly.
2: Well, again, this is cyclical because, you know, you're looking at this data. When you say fell by, then of course we're looking at what the last figure was. But then the last figure was much higher than what the previous last figure was.
1: Okay.
2: So let's look at it in context also.
0: और कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का पांचवा संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार तीन दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुड़ेंगे। इसमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
1: The government has reduced the stock holding period for sugar dealers to 15 days and fixed the stock holding limit at 1,000 quintals with effect from 15th of this month. It will remain effective till November this year. Consumer Affairs Ministry said that the government has revised the sugar stock holding norms to prevent hoarding and ensure smooth supply to consumers during the festive season.
0: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: Thank you, Vishal, for being with us. And before we close, the headlines once again. Union Minister calls for WTO-compliant approach to address global trade distortions at G20 Trade Ministers meeting. Asian stock market indices closed mixed and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। ये गीत है फिल्म वारिस से।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। समाचारों के उस पार मंजू आ गई है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में कल विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई। GDPDP पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर 2.42 लाख से ज्यादा विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई

0: कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded the captain for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। पर आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी मजाक कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Smith got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for a WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. The nation paid homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary yesterday. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi at Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvadharma Prarthana yesterday and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla and other leaders also paid tributes to the Mahatma. The nation also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary yesterday. Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to the former Prime Minister at his memorial Vijay Ghat in the national capital yesterday. In Punjab, Border Security Force BSF has neutralized two Pakistani intruders in Tarn Taran sector. Quoting BSF sources, Akashvani correspondent reports that they illegally crossed over to the Indian side of the border. Despite giving warnings by the deployed security personnel to stop, they continued advancing, forcing the BSF to open fire. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 6 gold medals in hockey, boxing, wrestling and archery in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence.

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी, ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके।

एक मेगा हर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 27 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिकंदा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगाज़ करते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

वाकई मिलन की रुत तो है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो ऐसे दिल जुड़ते हैं। ये वो वक्त है जब दो ऐसे दिल जुड़ने का समय होता है, जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। हेलो हाय, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप भी अच्छे हैं, तो फिर स्माइल करिए, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं, और जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं तो फिर मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ही के लिए।

जब दिल की महफिल सजी हो और हम जुड़े हों दिल से दिल तक, तो फिर बातें भी जज्बाती होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। रात का हसीन समा है और इस हसीन समा में नींद कैसे आएगी? और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रात भी हम लोगों के लिए एक जश्न ही है, जहाँ रात है, चांद है, तारे हैं और साथ में है खूबसूरत गीत। अगला गीत अभी के लिए।

चोरी सी नहीं बाबा, खुल्लम खुल्ला साथ चलने का ऐलान है। मोहब्बत में इंसान कितना बेपरवाह हो जाता है ना? उसे ना दुनिया की फिक्र होती है, ना कल की चिंता होती है। उसे बस एक ही ख्वाहिश होती है कि ये रात, ये पल यहीं ठहर जाए। जब वो मोहब्बत में होता है और अपने के साथ, अपनों के साथ होता है, तो एक ही तमन्ना होती है कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, ये रात यहीं रुक जाए, और वो उन सब लम्हों को कैद कर लेना चाहता है, उस पल को जी लेना चाहता है। और सच बताऊँ तो ये जो थोड़े से पल होते हैं हमारी ज़िंदगी में, यही कीमती होते हैं। और ऐसे लम्हों में अगर निगाहें मिल जाए तो फिर क्या कहना। अगला गीत आप ही के लिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा विसाल भी इतना हसीन नहीं होता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपके रात के हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:41 और 20 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप और अगला गीत रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में।

कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे खास एहसास किसे कहा जाए। कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर इस दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज़ या कीमती एहसास की अगर बात करें तो उसे क्या कहा जाए। कोई बहुत महंगी चीज़ को कीमती कहा जाए, फिर जवाब आता है कि नहीं, एक ऐसे इंसान का हमारी ज़िंदगी में होना जो हमेशा हमारे साथ है, एक ऐसी दो जोड़ी ऐसी आंखों का होना जो सिर्फ हमारे लिए इंतज़ार करती है, ऐसी चीज़ों का होना, ऐसी निगाहों का होना, ऐसे एहसास का होना, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इससे कीमती चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। आप इतने प्यार से बुलाएं और हम आए ना, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। वो ज़िंदगी कितनी फिजूल सी लगती है ना, जिसमें किसी ऐसे इंसान की कमी हो जिसकी आवाज़ हमें बुला सके, तो वो ज़िंदगी बेमायने सी लगती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर ऐसे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है तो उसे संभाल के रखिए, और अगर नहीं है तो उसकी तलाश कीजिए। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। शिपिंग कॉरपोरेशन के कामकाज के 65 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को बनाए रखने में शिपिंग कॉरपोरेशन की भूमिका पर जोर दिया। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरन तारण सेक्टर में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षाकर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए BSF को गोली मारनी पड़ी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति

कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। सादेशमलव 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 34 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

फिल्म का नाम तेरे घर के सामने और ये जादुई आवाज थी रफी साहब की, संगीत एसजी बर्मन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। ये फिल्म 1930

ये फिल्म 1963 में आई थी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसे लिखा और निर्देशित किया था विजयानंद ने और निर्मित किया था देवानंद ने। ये फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म ओरा थके ओधारे पर आधारित थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, नूतन, राजेंद्र नाथ, ओम प्रकाश और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। अगला गीत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ ना, तो मैं पहाड़ों में पहुंच जाती हूँ और ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा मौसम है और कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और फिर वहां से खुद को वापस लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सच में इस गाने में को जो पिक्चराइज किया गया है ना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दमदार है। अगर इस फिल्म की बात, गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, फिल्म का नाम शगुन, और ये फिल्म आई थी 1964 में, जिसको निर्देशित किया था नज़र साहब ने, और फिल्म में अभिनय किया था वहीदा रहमान, कमलजीत, नज़ीर हुसैन, अचला सचदेव, चांद उस्मानी ने, और इस फिल्म की शूटिंग को बॉम्बे और नैनीताल के महबूब स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, और इस फिल्म को संगीत से सजाया था खय्याम साहब ने और बोल लिखे थे साहिर साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मधुमती से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत सलील चौधरी का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्देशित और इस फिल्म को निर्मित किया था बिमल रॉय ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर ने निभाई थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला गीत फिल्म तुमसा नहीं देखा आप सभी के लिए रफी साहब और अर्शा जी की आवाज़ में।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे

जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: ये कसम कसम से लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:35 और 20 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर, रफ़ी साहब और मुकेश की आवाज़ में।

ये सदाबहार गीत आपने सुना फिल्म श्री 420 से, और आवाज़ें थी मुकेश, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की। संगीत से सजाया था इस फिल्म को शंकर जयकिशन ने, और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1955 में, और इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था राज कपूर साहब ने, और इस फिल्म को लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने, और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नरगिस और नादिरा ने। ये फिल्म 1955 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

97.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। वक्त हुआ है 1:50 और 20 सेकंड और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भी भक्ति गीत गाये। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 3 ऑपरेशन में बारीकी से नक्काशी की गई हाथी दांत की 4 चीजें, 1 तेंदुए की खाल, 2 जिंदा पेंगुलिन, 3 किलो बाघ की हड्डियां और बाघ के 2 केनाइन दांत जब्त किए हैं। इन 3 ऑपरेशन में 11 लोगों को पकड़ा गया है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना गोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

0: महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोर गोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल आंध्र प्रदेश केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना।

दिलों को आमीज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गई हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। सदुश लोग 1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 41 सेकंड रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

इसमें ऐसा ही होता है, कोई इंसान जो हमारे पास नहीं होता, हमारे करीब नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें ऐसा एहसास होता है कि वो इंसान हमारे आसपास ही है, हमारे साथ साथ कहीं ना कहीं उसका एहसास हमेशा साथ चलता है। सलामी इश्क बज चुका है, लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग से उस इंसान का खुमार नहीं उतरा है, वो अभी भी आपके दिलो दिमाग में छाया है, तो यकीन मानिए आप प्यार की गहराइयों में। और सच कहूँ तो जब इश्क का खुमार चढ़ता है तो पूरी दुनिया का शोर एक तरफ हो जाता है और उस अकेले इंसान की आवाज़ आपको जहाँ के तमाम शोर में अलग से सुनाई देती है, और सुनाई ही नहीं देती, महसूस भी होती है, क्योंकि इश्क बहुत लंबा चौड़ा नहीं, दो लफ्ज़ों का है। अगला गीत आप ही के लिए।

कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हम जिंदगी भर ढेरों बातें करते हैं, ढेरों लोगों से बात करते हैं, लेकिन जो बात वो दो लफ्ज़ कह पाते हैं वो हज़ार हज़ार पन्नों की किताबें नहीं कह पाती।

वही दो लफ्ज़ जो किसी की आंखों से बयां होते हैं, किसी के चेहरे से बयां होते हैं, किसी की झुकी हुई नज़रों से बयां होते हैं। और जब हम ऐसी फीलिंग से गुजर रहे होते हैं तो हम चाहे कितनी भी बुद्धू हों, कितनी भी अनाड़ी हों, शायर बन ही जाते हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

ये तो सच बात है कि जब इंसान प्यार में होता है, मोहब्बत में होता है, तो वो शायर के साथ साथ सिंगर भी बन जाता है, और वो अपने प्यार को गीतों में, गजलों में, शब्दों में ढूंढने लगता है, तलाशने लगता है। और सच कहूँ तो शायरी आए या ना आए, पर दिल में जब कोई इंसान उतर आता है, दिल में कोई इंसान समा जाता है, तो हमारा जो अंदाज है, चाहे वो देखने का हो, समझने का हो, किसी भी मामले में, वो हमारा जो अंदाज होता है, वो अंदाज अपने आप बदल जाता है। दुनिया की सारी चीज़ें हमें अचानक खूबसूरत लगने लगती हैं। तो प्यार संसार का वो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो इंसान को इंसान बनाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

कल रात तुम सपने में आए थे, कल रात तुम सपने में आए थे, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर हंसी मजाक कर रहे थे। हैरानी की बात है ये कि तुम्हारा चेहरा जो जहन में धुंधला पड़ गया था, रात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, आवाज़ भी बिल्कुल वही, खुशबू भी बिल्कुल वही। मैं सपने से उठकर एक साथ इतना खुश और उदास कभी नहीं हुई। दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:49 और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

वैसे कहा तो ये जाता है कि दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। किसी इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना, ख़ास बनना पहले से ही तय होता है। जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें मिल जाता है, तो सच कहूँ तो ज़िंदगी की सारी थकान और सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती है।

भाई जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगे फिरोज़। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई

0: उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात की। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए चल रहे तस्करी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एयरपोर्ट का एक कर्मचारी, 6 ट्रांजिट यात्री और विदेश जाने वाला एक भारतीय यात्री शामिल है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। आज लक्षद्वीप, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Mchar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Mchar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
0: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने and a fraction of a second.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11:12। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात के इस खामोश फिजा में जहां तारे इस विशाल आसमान को अपनी रोशनी से रोशन कर रहा है, और उसी प्रकार हवाओं में घुली है कुछ मीठी सी बेहद खूबसूरत खुशबू और उसकी नमी, वहीं हम हाजिर हैं आपके साथ कुछ खूबसूरत नगमों और दिल को छू लेने वाली यादों के नगमों के साथ। कहते हैं कि मोहब्बत भी बड़ी अजीब शय है, कभी किसी की मुस्कुराहट में नज़र आती है तो कभी किसी पुराने गीत के अल्फाज में अपना अक्स ढूंढ लेती है। और जब बात हो पुराने फिल्मी गीतों की तो हर नगमा अपने साथ एक खूबसूरत दास्तान लेकर आता है। आज की इस हसीन रात का आगाज करते हैं साल 1970 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म आन मिलो सजना के एक बेहद दिलकश नगमे से, जिसे अपनी पुरकशिश आवाज से सजाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने। अल्फाज हैं आनंद बख्शी साहब के और संगीत बेहद खूबसूरत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का। तो ज़रा अपनी यादों के गुलशन में उतरिए और इस नगमे के साथ महसूस कीजिए मोहब्बत के तमाम रंग, क्योंकि हर फूल का रंग अपना रंग होता है और हर गीत का अपना एक अलग एहसास। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म आन मिलो सजना से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा बेहद खूबसूरत प्यार भरे नगमों के साथ हमराही, और हमराही में मैं हूँ आपका हमराही फिरोज। तो आप सभी का रात के इस खामोश फिजा में एक बार फिर से खैर मकदम है, जहां लफ्जों से ज्यादा एहसास बोलते हैं और खामोशी भी कभी कभी किसी से गुफ्तगू करने लगती है। कहते हैं ना दोस्तों, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब कोई आपसे यूं ही बात करता रहे बिना किसी खास वजह के, और आप बस उसकी आवाज में अपनी पूरी दुनिया तलाश रहे हो। कभी कभी किसी की छोटी सी बात चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है, और किसी की आवाज रातों को और भी हसीन बना देती है। तो आज के इस बेहद खूबसूरत रात में क्यों ना कुछ ऐसा ही बेहद खूबसूरत प्यारे एहसासों को याद किया जाए। ऐसे एहसासात जो हमेशा के लिए आपके दिल में बस गए, जहाँ ना कोई शिकवा हो ना कोई शिकायत, बस हो तो मीठी सी गुफ्तगू और दिल में छुपी मोहब्बत। ऐसा ही एक नगमा है 1970 में आई फिल्म सच्चा झूठा से, जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने एक बार फिर से। इंदिवर साहब के खूबसूरत बोल और कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत इस गीत को एक ऐसा एहसास देते हैं जो आज भी दिल के बेहद करीब है।

0: और आप ही उसे गुनगुनाने पर हमेशा मजबूर हो जाते हैं जब भी इसे सुनते हैं। तो अपने किसी खास शख्स को याद कीजिए, उनकी बातों को महसूस कीजिए और इस सदाबहार नगमे के साथ खो जाइए मोहब्बत की हसीन वादियों में। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा लेट नाइट शो, जहां हर नगमा एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक बेहद खूबसूरत एहसास।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है? मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में।

रात की इस हसीन फिजा में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े वादों और इजहार का नाम नहीं होती। कभी किसी का यूं सजना सवरना, कभी नजरों का चुपके से मिलना, तो कभी एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी दिल में हजारों ख्वाब जगा देती हैं। और जब कोई अपने महबूब के लिए काजल लगाए, गजरा सजाए, तो यकीन मानिए उस सादगी में भी एक अलग ही कशिश होती है। आज के इस खुशनुमा रात में हम आपको ले चलेंगे उन सुनहरे दिनों की तरफ, जहां रोमांस में नज़ाकत थी, गीतों में शरारत थी और मोहब्बत में एक अलग सी मिठास हुआ करती थी। ऐसा ही एक नगमा 1972 में आई फिल्म अपना देश का, एक ऐसा चुलबुला और रोमांटिक नगमा जिसे अपने दिलकश आवाजों से सजाया है किशोर कुमार साहब और हम सबकी प्यारी लता जी ने। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का मस्त मौला संगीत इस गीत को आज भी उतना ही खास बना देता है जितना आज से तकरीबन 50 साल पहले था। तो जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने किसी खास को याद कीजिए और महसूस कीजिए वो मीठी सी शरारत, वो प्यार भरी नजाकत, क्योंकि कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, सीधे दिल में उतर जाते हैं। इसी प्यार, इसी एहसास और इन्हीं सुरीली यादों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि रात अभी जवां है और मोहब्बत के नगमे अभी बाकी हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:35 और 3 सेकेंड। तो जनाब, आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइएगा और आप अपने दिल की बात हम तक ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा मेल आईडी नोट कर लें। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldeirdaily@gmail.com। इट्स fmgoldeirdaily@gmail.com। हमें आपके पैगामात का इंतज़ार है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हमराही के इस बेहद खूबसूरत सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज़ कोई तोहफा नहीं, कोई कसम नहीं, कोई वादा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास होता है। जो एक दिल दूसरे से जाकर मिलता है तब वो एहसास पैदा होता है। जो एक ऐसा वादा करता है जिसमें भरोसा भी होता है, इंतज़ार भी, और उम्र भर साथ निभाने का खूबसूरत ख्वाब भी। कभी किसी की कही हुई एक छोटी सी बात पूरी ज़िंदगी की सबसे हसीन याद बनकर रह जाती है, और कभी एक वादा दुनिया में भी दो दिलों को करीब रखता है और उसके जाने के बाद भी।

तो आज की इस रूमानी रात में ज़रा उन लम्हों को याद कीजिए जब किसी ने आपसे कोई वादा किया था और आपने उस वादे को अपने दिल में बड़े प्यार से सहेज कर रखा था। आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसे ही मीठे एहसासात से जुड़ा है। साल था 1971 का और एक फिल्म आई थी कारवां। उस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक गीत है जिसमें अपनी जादुई आवाज से इस गीत को सजाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलकश अल्फाज और आर डी बर्मन साहब का बेहद सुरीला संगीत इस गीत को एक ऐसा खूबसूरत एहसास बना देता है जो आज भी मोहब्बत करने वालों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा है। तो आइए अपने किसी खास को याद कीजिए जिसे आप चाहते थे, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, उस मुस्कुराते हुए चेहरे को, अपनी उस प्यारी सी बातों को और उस वादे को जो शायद आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुआ है। इसी एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस दिलकश महफिल में।

लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में नगमा था फिल्म कारवां का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल की बातें उतनी ही साफ सुनाई देने लगती हैं। दिन भर की भाग दौड़ थम चुकी है, शहर की रौनक कुछ कम होने लगी है, लेकिन शायद इस वक्त किसी के दिल में किसी की याद पहले से कहीं ज्यादा रोशन है। कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स आता है और उसके आने के बाद हमें खुद समझ नहीं आता कि दिल को हुआ क्या है। उससे मिलना अच्छा लगता है, उसकी बातें याद आती हैं, उसकी मुस्कुराहट बार बार आंखों के सामने आती हैं, और फिर दिल खामोशी से पूछता है, आखिर ये कैसा एहसास है। शायद यही मोहब्बत की पहली दस्तक होती है। ऐसा एक बेहद खूबसूरत नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इस बेहद खूबसूरत महफिल में, आज की इस रुमानी रात में। 1985 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म प्यार झुकता नहीं का एक बहुत ही प्यारा नगमा, शबीर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों से सजा है ये गीत, जिनके अल्फाज हैं SH बिहारी साहब के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब का। तो अगर इस वक्त आपकी आंखों के सामने भी किसी खास का चेहरा है, अगर किसी मुलाकात की याद आपके दिल में आज भी महफूज है, तो उस एहसास को ज़रा महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में बस मिलते नहीं, दिल में उतर जाते हैं इस नगमे की तरह।

तुमसे मिलकर न जाने क्यों कुछ याद आता है, और यादों की बात जब चली है तो फिर दिल उन्हीं यादों की तरफ मचलता हुआ चला जाता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ एहसास इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें जोर से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर, एक मुस्कुराहट और एक खामोश सी अदा, और दिल सब कुछ समझ लेता है। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है दोस्तों, दिल पर पड़ने वाली एक हल्की सी दस्तक जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर बयां करना आसान नहीं होता। और जब सामने हो कोई खास तो उसके हाथों से आई छोटी सी शरारत बस सब कुछ एक अलग तरह के माहौल में बदल देती है। फिर दिल बस इतना ही कहना चाहता है, जरा आहिस्ता, ये दिल बहुत नाजुक है। आज की इस रूमानी रात में, इस बेहद खूबसूरत संगीत के सफर में, अगला नगमा आप ही की पसंद का, 1975 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रेम कहानी से। मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में गीत आनंद बख्शी साहब के और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत। तो अगर इस वक्त आपके पास भी कोई खास यादें हो मौजूद, जैसे कोई पुराना खत, कोई मुलाकात या किसी की मुस्कुराती हुई कोई तस्वीर, तो उसे ज़रा अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए और इस नगमे को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ एहसासात बस आहिस्ता आहिस्ता महसूस करना ही अच्छा लगता है। तो आइए इन्हीं एहसासात को आप भी महसूस कीजिए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जहां रात की खामोशी में भी मोहब्बत की एक मीठी सी गुफ्तगू जारी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय वे लोग नहीं है जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से

0: दूर है लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल ने तरन तारण सेक्टर में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षा कर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिशूल 30 सितंबर को स्पेन के वालेंसिया बंदरगाह पहुंचा। ये भूमध्य सागर, अटलांटिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में उसकी तैनाती का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान INS त्रिशूल स्पेनिश नौसेना के साथ क्रॉस डेक भ्रमण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा। पाकिस्तान सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी। PTI नेताओं के इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले मतभेदों को सुलझाने के लिए सरकार से कल बातचीत हुई थी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और मोहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11:03 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात जितनी खामोश होती जाती है दिल उतनी ही साफ आवाज में हमसे बातें करने लगता है। दिन भर की

भाग दौड़ में हम न जाने कितनी बातें पीछे छोड़ आते हैं, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ अनकहे जज्बात और कुछ ऐसे लोग जिनकी याद अचानक रात के किसी पहर दस्तक देती है। लेकिन आज की रात उन अधूरे ख्वाबों को मायूसी से नहीं, उम्मीद की नज़र से देखने का है, क्योंकि जिंदगी भी तो एक बगिया है। कभी इसमें धूप खिलती है, कभी बारिश होती है, कभी कोई फूल मुरझाता है, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। नई सुबह के साथ कोई नई कली भी फिर से मुस्कुरा उठती है, और शायद इसी खूबसूरत एहसास को बहुत ही सादगी से कहता है आज का ये हमारा पहला नगमा। फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, इस गीत को लिखा है नीरज साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है एसटी बर्मन ने। तो जो लोग इस वक्त जाग रहे हैं, हमें सुन रहे हैं या सफर कर रहे हैं किसी की याद में, किसी ख्वाब में, या बस अपने पास से मिलने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, इस गीत को अपने नाम कीजिए और याद रखिए, आज अगर रास्ता थोड़ा मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खूबसूरत नहीं होगी। ख्वाबों को जिंदा रखिए, दिल में थोड़ी सी रोशनी रखिए, क्योंकि जिंदगी की बगिया को महकने में कभी कभी बस एक उम्मीद की छोटी सी जरूरत होती है।

जी हाँ, यकीनन जीवन की बगिया महकेगी। दिल में सच्ची लगन और मेहनत हो, सच्चे प्यार के साथ आप कदम आगे बढ़ाएं तो यकीनन जीवन की बगिया तो महकेगी ही। रात के इस खूबसूरत पहर में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी भी एक सफर है, कभी सीधी राह, कभी कोई अनजान मोड़, और कभी ऐसा हम सफर जो पूरे सफर का मतलब ही बदल दे। दोस्तों, जिंदगी में आने वाला हर मोड़ हमें डराने के लिए नहीं होता, कई बार वही मोड़ हमें एक नई राह, एक नया ख्वाब और एक नई उम्मीद दिखाता है। अगर आज का रास्ता थोड़ा मुश्किल है तो परेशान मत होएं। याद रखिए, एक मुश्किल मोड़ पूरी जिंदगी का रास्ता नहीं होता, बस चलते रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला मोड़ आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। और इसी एहसास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक बेहद खूबसूरत नगमा सुनवाएंगे, मेरे हमसफर फिल्म का ये सदाबहार गीत, किसी राह में किसी मोड़ पर। 1970 की इस खूबसूरत फिल्म में जो आवाज़ है, इस नगमे में जो आवाज़ें हैं, वो है मुकेश साहब और लता जी की। गीतकार हैं आनंद बख्शी साहब और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। तो इस रात अपनी फिक्र थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इस गीत के साथ अपने ख्वाबों की राह पर निकल पड़िए हमारे साथ इस बेहद खूबसूरत सफर में जिसका नाम है अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

मेरे हम सफ़र वो होता है जो हर हाल में आपके साथ होता है, हर मुश्किल हालात में आपके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। और जब ऐसा हम सफ़र हो तो ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगने लगती है। रात के इस खामोश पहर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। कभी कभी ज़िंदगी में अंधेरा बाहर नहीं, हमारे ख्यालों में होता है, हमारे अंदर होता है। और ऐसे वक्त में किसी अपने की एक मुस्कान, एक प्यारी सी बात दिल में उम्मीद का चिराग जला देती है। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, अपने पैगामात के ज़रिए, अपने खूबसूरत अल्फाजों के ज़रिए। आपको करना ये है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। साथ ही साथ आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा fmgoldaiadaily@gmail.com। इट्स fmgoldaiadaily@gmail.com। और साथ ही साथ अगर आप हमें चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें अपने पैगामात पहुँचाएँ, तो उसके लिए हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है 9868687853। इट्स 9868868753। ये वो नंबर है जिस पर आप अपने ख्यालात का इजहार हम तक पहुँचा सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आज का अगला ये खूबसूरत नगमा बेहद खूबसूरत एहसासात से भरा हुआ, एक ऐसा वादा जिसमें प्यार के साथ साथ भरोसा भी है और साथ निभाने की चाह भी, कि चाहे हालात कैसे भी हों, किसी भी हाल में अपने के चेहरे की रोशनी को कम नहीं होने देंगे। ऐसा ही एक नगमा है

1972 में आई फिल्म अनुराग से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की, गीत लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है एसटी बर्मन साहब का।

मुताबिक ठीक 4:32 और 28 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात के इस खामोश पहर में हम और आप मिलकर चल रहे हैं इस बेहद खूबसूरत सफ़र पर। कुछ लोग हैं जो हमें पढ़ते हुए सुन रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमें सफ़र करते हुए सुन रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमें अपना काम करते हुए सुन रहे हैं, और कुछ हैं ऐसे जो किसी को याद करते हुए सुन रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी याद खुद ब खुद दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कभी कोई खुशबू, कभी कोई पुराना रास्ता और कभी कोई गीत हमें उन खूबसूरत लम्हों तक वापस ले जाता है। कहते हैं मोहब्बत में सिर्फ किसी का साथ होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी किसी की याद भी दिल को रोशन रखने के लिए काफ़ी होती है। और जब दिल में किसी की याद बस जाए तो लगता है जैसे फिजा का हर रंग, हर पत्ता उसी का जिक्र कर रहा हो। जैसे अगला ये नगमा, और ये नगमा है 1972 में आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म एक नज़र से, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। तो आज रात अपनी कुछ पुरानी यादों को मायूसी से नहीं, मुस्कुरा कर याद कीजिए, क्योंकि हर गुजरा हुआ लम्हा एक सबक है और हर आने वाला पल एक नया मौका। और याद रखिए, दिल में मोहब्बत, ज़वा पर शुक्रिया और आने वाले कल के लिए उम्मीद, यही जिंदगी की असल खूबसूरती है। तभी तो ऐसे नगमे बनते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी

पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। यकीनन हर चीज में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, और ये जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ये जिंदगी का सफर भी कुछ ऐसा ही है। ये जिंदगी का सफर भी कभी कभी अजीब सा लगता है। कभी हम किसी रास्ते पर चलते हुए सोचते हैं कि ये हमारी मंजिल है, और फिर अचानक कोई मोड़ आ जाता है जो हमें एक बिल्कुल नई राह पर लेकर चला जाता है। कुछ मोड़ हमें किसी से मिलाते हैं, कुछ किसी से दूर कर देते हैं, और कुछ मोड़ हमें खुद से रूबरू करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ता बदल जाना हमेशा कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी वही नया रास्ता हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है। आज के इस महफिल में अगला बेहद खूबसूरत नगमा भी कुछ ऐसा ही है, जहां रास्ते अलग हो सकते हैं मगर यादें और एहसासात दिल में अपनी जगह बनाए रखते हैं। ऐसा ही एक नगमा है 1975 में आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आंधी से। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने और संगीत है आरडी बर्मन साहब का। तो इस गीत के साथ आज अपने सफर को याद कीजिए, और अगर जिंदगी के किसी नए मोड़ पर खड़ी है तो घबराइए मत। हर मोड़ मंजिल से दूर नहीं करता, कुछ मोड़ हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो आइए पुरानी राहों को सलाम कीजिए, मगर नई राहों से अपनी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अक्सर अगले मोड़ के बाद ही शुरू होता है।

किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में ये नगमा था, बेहद खूबसूरत फिल्म फरार से, और ये फिल्म आई थी 1975 में। इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात के इस खामोश पहर में जब दुनिया थोड़ी थम सी जाती है, तब दिल की आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। ऐसे ही दिल की आवाज नगमों में बदलकर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके लिए। कभी आपने गौर किया है, दिन भर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात होते ही दिल चुपके से उन पुराने लम्हों की तरफ लौट जाता है, जहां शायद जिंदगी थोड़ी और आसान और खूबसूरत लगने लगती है। मुस्कुराहट थोड़ी सच्ची और खुशियां बिल्कुल बेफिक्र सी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ तो देते हैं, मगर दिल उन्हें कभी अलविदा नहीं कहता। आज का यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है, उन्हीं पुरानी यादों को सहेजे हुए एक खूबसूरत तस्वीर की तरह है। फिल्म मौसम का यह नगमा 1975 में आई है फिल्म, जिसको लिखा है गुलजार साहब ने, और आवाजें हैं भूपेंद्र और हम सब की प्यारी लता जी की, संगीत मदन मोहन साहब का। तो आज रात कुछ पल के लिए अपने फिक्र किनारे रख दीजिए और उन लम्हों को याद कीजिए जिन्होंने आपको कभी बेवजह मुस्कुराना सिखाया था। बीते हुए कल को याद करना

खूबसूरत है मगर आने वाले कल की उम्मीद छोड़ देना नहीं, उसे उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। जो सुकून कभी मिला था वैसा सुकून फिर मिल सकता है, शायद किसी नए लम्हे में, किसी नई राह पर, इस खूबसूरत गीत की तरह।

भूपेंद्र सिंह और लता जी की नई आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। अरुणिमा से आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं रहूँगा आपके साथ लेकर भोर सुहानी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार के उपचार का प्रबंध करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवाकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरनतारण क्षेत्र में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी।

0: तैनात सुरक्षा कर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे, इसलिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस त्रिशूल 30 सितंबर को स्पेन के वालेंसिया बंदरगाह पहुंचा। यह भूमध्य सागर, अटलांटिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में उसकी तैनाती का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान आईएनएस त्रिशूल स्पेन की नौसेना के साथ क्रॉस डेक भ्रमण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। जापान में एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smit Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound fly-the-way flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki soojbujh ne, yani friction of second mein itne nirnay kar liye aapne, aur itne logo ki jaan bachayi. Aur aaj pura desh garv se keh sakta hai ki hum Hindustani jaan lene wale log nahi hain. जान बचाने वाले दो पर आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की, और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, U.S. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest-growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 10 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। तो एक नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई जिंदगी को एक बार फिर खूबसूरत बनाने का एक नया मौका। कभी कभी हमें लगता है कि रास्ते बहुत मुश्किल हैं, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन शायद ज़िंदगी का असली सबक यही है कि रास्ते आसान हों ये ज़रूरी नहीं, हमारा हौसला मजबूत ज़रूर होना चाहिए। आज की इस सुबह एक छोटी सी दुआ अपने दिल में ज़रूर रखिए कि हमारे अंदर इतनी रोशनी हो कि हम किसी के अंधेरे का सबब नहीं बल्कि उसकी उम्मीद बन सकें। हमारी ज़बान में मिठास हो, दिल में इंसानियत हो और मुश्किल वक्त में भी सब्र बना रहे। और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ याद आता है 1957 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म दो आंखें 12 हाथ का ये अमर गीत।

ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये गीत नहीं बल्कि हम सब के दिलों की ये आवाज है। वैसे क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उस ईश्वर उस खुदा के नाम से सबसे पहले करते हैं और उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। इस गीत को अपनी आवाज दी लता जी ने, गीतकार हैं भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई साहब का। तो आइए इस सुबह कुछ पल ठहरते हैं, अपने दिल को सुकून देते हैं और याद करते हैं कि बेहतर इंसान बनने की कोशिश ही शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत इबादत है। तो दोस्तों, सुबह की इस पहली रोशनी के साथ इस बात को याद रखिए कि हर नया दिन हमें बदलने का नहीं, खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। मुस्कुराइए, शुक्रगुजार रहिए उस ईश्वर का, उस खुदा का जिसने हमें इंसान बनाया, जो सर्वश्रेष्ठ है।

ऐ मालिक तेरे बंदे हम, यकीनन हम तेरे बंदे हैं, ये संसार भी तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही दिया हुआ ये सब कुछ है, ये सांसें, ये जिंदगी, ये जिस्म, ये जान। सुबह की पहली किरण के साथ एक खूबसूरत ख्याल आपके दिल तक पहुंचता है। हमारी पहचान सिर्फ हमारे नाम से नहीं, हमारी पहचान इस बात से भी होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, फिर क्यों न इसे नफरत से

मोहब्बत से जिया जाए, शिकायतें शिकायतों से नहीं शुक्रिया से जिया जाए, और फासलों से नहीं भाईचारे से जिया जाए। अगर हम में ये तमाम चीज़ें हैं तो हम एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। सोचिए, अगर हम किसी अनजान इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, किसी परेशान शख्स की बात सुन सकें,

परेशान शख्स की बात सुन सकें, किसी ज़रूरतमंद का हाथ थाम सकें, तो शायद यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े काम ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी एक अच्छा लफ्ज़, एक छोटी सी मदद और दिल से निकली हुई दुआ भी काफ़ी होती है। तो आज की सुबह एक छोटा सा वादा अपने आप से कीजिए, जहां मुमकिन हो वहां मोहब्बत बांटेंगे, जहां ज़रूरत हो वहां मदद करेंगे, और जहां दिलों के बीच फासला हो वहां भाईचारे का पुल बनाएंगे। क्योंकि आखिर में हम सब की खुशी, हमारी इंसानियत और हमारा सुकून एक दूसरे से ही तो है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही हो हमारी सुबह की दुआ और यही हो हमारी जिंदगी की खूबसूरत पहचान। आपका दिन खुशियों से भरा हो, दिल में सुकून हो और हर मुलाकात में इंसानियत की खुशबू हो, इस नगमे की तरह।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:21 और 49 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, सुबह की ये पहली किरण हमें हर रोज एक खूबसूरत बात याद दिलाती है, वक्त कभी ठहरता नहीं, पल आता है, मुस्कुराता है और फिर खामोशी से आगे बढ़ता चला जाता है। कभी हम बीते हुए कल के फिक्र में उलझे रहते हैं और कभी आने वाले कल की चिंता में आज को ही भूल जाते हैं, लेकिन जिंदगी तो इसी आज का नाम है ना। जो पल अभी आपके पास है उसे पूरे दिल से जी लीजिए, किसी अपने से प्यार से

से बात कर लीजिए, किसी रूठे हुए को मना भी लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आइए, क्योंकि शायद यही छोटा सा लम्हा कल आपकी सबसे खूबसूरत याद बन जाए। और अगर बीता हुआ कल आपको परेशान करता है तो उसे एक सबक की तरह देखिए और आने वाले कल से डरने के बजाय उस पर उम्मीद रखिए, क्योंकि हर सुबह अपने आप में एक नई उम्मीद लेकर आता है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कुछ बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का, और सबसे बढ़कर खुद को थोड़ा और बेहतर इंसान बनाने का। इसी खूबसूरत फलसफे को बेहद सादगी और गहराई से बयां करता है फिल्म गोलमाल का ये सदाबहार बेहद खूबसूरत नगमा आने वाला पल जाने वाला है। किशोर कुमार साहब की ये बेहद खूबसूरत आवाज़ जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और संगीत है आर डी बर्मन साहब का।

जी हाँ दोस्तों, आने वाला पल जाने वाला है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया है इस नगमे में। हर पल इंसान को ये मान के चलना चाहिए कि ये पल हमारा आखिरी पल है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और तभी हम अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ पाएंगे। नई सुबह अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आती है। ज़िंदगी में अगर कभी अंधेरा लगे तो मायूस मत होइए, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को चुनौती देने के लिए काफ़ी होती है। किसी के रास्ते में रोशनी बनना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी उदास दिल को हौसला देना, शायद यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन बदलाव हमेशा बड़े कामों से नहीं बल्कि आपकी छोटी छोटी सोच, दूसरों की मदद और किसी को मुसीबत में काम आने से होती है। कभी एक अच्छा लफ्ज़, एक छोटी सी मदद और किसी के लिए दिल से निकली हुई दुआ भी बहुत कुछ बदल देती है। आज की सुबह एक छोटा सा इरादा कीजिए, जहां अंधेरा मिले वहां उजाला बांटेंगे, जहां निराश मिले वहां उम्मीद जगाएंगे। इसी खूबसूरत संदेश को समेटे हुए है ये बेहद खूबसूरत नगमा। मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा है, जिसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का।